नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet secretaries of key ministers.

भारत अनेक आस्थाओं, परंपराओं और महान संतों की तपस्थली है। यहाँ विविध विचारधाराएं होने के बाद भी मानवता, करुणा और सत्य का संदेश सदैव सर्वोपरि रहा है। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है। राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को नमन करते हुए प्रस्तुत है यह प्रेरणादायक देशभक्ति गीत।

सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने मानवता, सेवा, समानता और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, परिश्रम और निस्वार्थ सेवा है। उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशमान करती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर, अर्थात ईश्वर एक है, वही सृष्टि का रचयिता है, वह निर्भय है, किसी से बैर नहीं रखता और सब में समान रूप से विद्यमान है।

दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म, साहस और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और सत्य के लिए अडिग रहने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन्ते कबहु न टरो। अर्थात हे परमात्मा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सदैव शुभ कर्मों के मार्ग पर चलूं और सत्य के लिए कभी पीछे ना हटूं।

जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मसंयम का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता ही सच्चा धर्म है। भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना ही सर्वोच्च धर्म है। करुणा और दया ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है।

भगवान बुद्ध ने संसार को मध्यम मार्ग, करुणा और आत्म जागरण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के जागृत मन में मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीप बनो, अपने विवेक, ज्ञान और सत्कर्मों के प्रकाश से जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। महान बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने ज्ञान, तर्क और करुणा के माध्यम से बौद्ध दर्शन को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनका चिंतन हमें विनम्रता, विवेक और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। आचार्य नागार्जुन जी ने कहा कि प्रज्ञा के बिना मुक्ति नहीं और करुणा के बिना प्रज्ञा अधूरी है। अर्थात सच्चा ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके साथ करुणा और मानवता भी जुड़ी हो।

0: श्रोताओं, ये था आज का वंदना कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: मनुष्य का सबसे बड़ा गुण करुणा का भाव है। करुणा मनुष्य को देवत्व पद प्रदान करवा सकती है। जिसके हृदय में करुणा नहीं, उसका हृदय तो वन प्रांत में पड़े सूखे तालाब की तरह व्यर्थ है, मात्र एक गड्ढा है, जहां आकर पशु पक्षी मनुष्य सभी निराश होकर वापिस लौट जाते हैं। इसलिए लोक कहता है, जिनके घर करुणा नहीं, नहीं दया का भाव, उनका हृदय जानिए सूखा पड़ा तराव। करुणा में वो शक्ति है जो दैत्य का हृदय परिवर्तन कर देवत्व प्रदान कर दे, दानव को मानव बना दे, भक्षक को रक्षक और एक पथ लुटेरे को महाकवि और त्रिकालदर्शी ऋषि बना दे। वाल्मीकि का नाम कौन नहीं जानता? जंगल में राहगीरों को लूटना और उन्हें हताहत कर पीड़ित करना उनकी दिनचर्या थी। आखेट द्वारा क्रौंच पक्षी को आहत दशा में देखकर तथा क्रौंची के हृदय विदारक रुदन को सुनकर लुटेरे वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा था। उसी करुणा ने उनके भीतर बैठे दैत्य को बाहर निकालकर उनके भीतर देवत्व की स्थापना कर दी। इसलिए लोक कहता है, जंगल में पथ लूट ता गयो जमारो बीत, पंछी की पीड़ा दिखी बेकल होयो जीत। धनस बाण फेंक्या परा मनचित आयो राम, कवि ऋषि की ख्याति मिली वाल्मीकि शुभ नाम। ये प्रभाव है करुणा का। एक बार अपने हृदय में करुणा का प्रादुर्भाव हो जाए तब समस्त मानव मूल्य जागृत हो जाते हैं। करुणा को इसीलिए मानव मन की सर्वाधिक मूल्यवान मणि कहा गया है। इसीलिए परमात्मा को करुणा निधान कहा गया है। पहले करुणा का उदय होता है, फिर दया का।

0: प्रकट होता है। यदि करुणा जागृत नहीं हुई तो दया भी उदित नहीं होती। पहला करुणा उपजे फिर दया को भाव, कड़वी भेषज के समा सुथरो करे सुभाव। करुणा के कारण हृदय में जो व्याकुलता होती है, जो बेकली होती है, वो कड़वी औषधि के समान ही है। वो औषधि पहले व्याधियों का उपचार करती है, फिर तन मन को निर्मल और निरोग बना देती है। गौतम बुद्ध ने जब आहत हंस को पड़ा देखा, तब उनके हृदय में प्रथमतः दया नहीं उपजी, करुणा उपजी। उनका अंतर्मन व्याकुल हो उठा, पश्चात दया का प्रादुर्भाव हुआ। हम कह सकते हैं करुणा दया की माता है। करुण की प्रसव पीड़ा से दया का जन्म होता है। सम्राट अशोक ने जब एक लिंग के नरसंहार को देखा, तब उन्हें युद्ध की विभीषिका का भान हुआ। उनका हृदय रो उठा, करुणा से व्याकुल हो उठा। उनके हाथ की रक्त रंजित तलवार धरती पर गिर पड़ी। करुणा से दया का जन्म हुआ और दया से शांति का और फिर प्रेम का। ऐसा है करुणा का प्रभाव। करुणा यदि मन में रहे, दया रहे मन बीच, गंगा यमुना बह उठें, बाहर कर दें कीच। करुणा और दया की गंगा यमुना भीतर के सारे कलुष को धोकर मन चित को निर्मल कर देंगी। मन शांत और तन पुलकित हो उठेगा।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको वाटर हार्वेस्टिंग के विषय में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी का वाचन कर रहे हैं कृषक अंतिम पटेल।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अंतिम पटेल मोटक्का माफी जिला खंडवा से एक युवा कृषक। दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बारिश के पानी को बेकार बहने से रोकने के लिए और भूमिगत जल को बचाने के लिए किया गया सरकार का और हम लोगों का एक प्रयत्न है। दोस्तों आने वाले समय में पानी भूमिगत जो जल है वो हमारी भूमि से कहीं ख़त्म ना हो जाए और हमारी भूमि बंजर ना हो जाए, उसके लिए जो बारिश है उसका पानी हमें भूमिगत करना है, उसे भूमि में उतारना है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि बहुत सारी सरकार ने योजनाएं चलाई है कि जो गांव का पानी होता है उसे गांव में, खेतों का पानी खेतों में, ये योजनाएं भी चली थी हमारे क्षेत्र में। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो सरकार बता रही है कि जो छतों का पानी है नीचे हम टैंक रख के उसमें भी इकट्ठा कर सकते हैं, लंबे समय तक उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही उसे भूमि में उतार सकते हैं, जिसकी तीन लेयर बनाई जाती है, जैसे बजरी डाल के या गिट्टी डाल के या रेत डालकर एक गड्ढा बनाया जाए जिसमें जो ऊपर का छत का पानी है भूमि में नीचे की ओर धीरे धीरे उतर जाए और भूमिगत जल की कमी ना हो पाए। और ये तो हमारे गांव की बात हो गई, पर दोस्तों मैं खेतों की बात करना चाहूँगा क्योंकि खेती में पानी से ही फसलें तैयार होती है और पानी से ही फसलें होती है। तो एक युवा कृषक होने के नाते मैं आपको बता दूँ कि बारिश के पानी को बचाने के लिए पहले तो हम टपक सिंचाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश का पानी क्या है कि यही पानी हमारे जल स्रोतों में रहता है, हमारे कुएं में रहता है, ट्यूबवेलों में रहता है। तो हमें पानी का इस्तेमाल बहुत संभल के करना है, सोच के करना है, व्यर्थ नहीं बहाना है। जैसे बारिश होती है तो हमारे खेत के आसपास यदि जल भराव की जहाँ स्थिति होती है वहाँ गड्ढा कर दे या तालाब बनाने जैसी स्थिति हो तो तालाब बनाए, जिससे क्या हो सकता है कि हमको वहाँ से एक रोजगार का भी ऑप्शन होता है, मत्स्य पालन का भी हम काम कर सकते हैं। और ये जो बारिश का पानी है धीरे धीरे जब सूखेगा गड्ढे से तो नीचे की ओर उतर जाएगा, जिससे भूमिगत जल की जो कमी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। साथ ही दोस्तों खेत के आसपास मेड़ के आसपास गटर खुदवाना या ढलाल वाली जगह पर ऐसे गड्ढे टाइप खुदवाना जिससे पानी रुक रुक रुक के बहे, तो जिससे क्या है लंबे समय तक पानी रुक रुक के बहेगा तो ये जो पानी है ये रुक रुक के बहने वाला पानी धीरे धीरे जमीन की ओर नीचे की ओर रिसेगा और जैसे ही जमीन के नीचे की ओर रिसता जाएगा तो जो भूमिगत जल है उसकी जो कमी है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी और आने वाली जो नस्लें हैं वो पानी को ना तरसे, इसलिए ये काम हमें करना जरूरी है। क्योंकि आज से ही पानी बचाएंगे तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध हम पानी के लिए ही लड़े। और सुना है कि महाराष्ट्र की अधिकांश महिलाओं का जीवन पानी लाने में ही खत्म हो जाता है। कई

0: किलोमीटर तक बेचारी महिलाएं पानी लेने जाती है और वहां से वापस आती है, तो उनका आधा जीवन तो वहीं समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को पीने का पानी मिल सके, खेती के लिए पानी मिल सके, तो हमें सरकार की जो बनाई गई नीतियां हैं उनका उनका साथ कार्य करना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों को विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा और हम युवाओं की भी सोच यही होना चाहिए कि पानी बचाया जाए। यदि खेतों में पानी की भराव की स्थिति है या बंद ट्यूबवेल है उसकी ओर भी हम पानी को ले जा सकते हैं, सूखे कुओं की ओर पानी ले जा सकते हैं जिसमें पानी भर जाए और समय के साथ वो पानी धीरे धीरे धीरे धीरे जमीन में रिसता जाएगा, जिससे भूमिगत जल है उसकी मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस दौर में बारिश की जो कमी है वो अधिक है और बारिश कम होने के कारण आने वाले समय में पानी की बहुत कमी आ सकती है और ग्रीष्मकालीन जो पानी है वो पीने के लिए भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की बहुत कमियां हुई थी, आने वाले समय में पानी की कमी ना हो इसके लिए विशेष करके ध्यान दें और पानी बचाएं। धन्यवाद दोस्तों।
1: खेती की बातें में अभी आपने वाटर हार्वेस्टिंग के विषय में प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल द्वारा दी गई जानकारी सुनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर अब वक्त है आप श्रोताओं को आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। 7:20 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक पत्रिका इंदौर परिक्रमा। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मुकाम सिंह चौहान। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:35 पर। रूपक मालवा की गंगा माँ शिप्रा सुनिएगा 8:30 पर। इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवती लाल पुरोहित। प्रस्तुति बीना पी शर्मा और संजीव मालवीय की है। चंद्रप्रकाश सोनवे और साथियों के गाए लोक गीतों का आनंद आप ले सकते हैं लोक संगीत में 9:00 और 6:45 पर। सुगम संगीत में उमेश भट्ट की गाई गजलें सुनिएगा 9:15 और 6:30 से। शास्त्रीय संगीत में आज 9:30 पर हम आपको बहाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 रागिनी देवले का राग भूपाली में ख्याल गायन सुनिएगा। सजीव फन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन होगा 10:05 से 11:00 के मध्य। इस कार्यक्रम में आप इस समय के मध्य में फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। और आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में बता दें। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आप सुनेंगे दिन में 11:00 से। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है 12:00, 2:00 और 2:30 पर। 1:00 का समय होगा महिला कार्यक्रम का। आज के कार्यक्रम में खेल जगत में महिलाओं की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। साथ ही योजना क्रम में मिशन वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी होगी। महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता और निवेश इस विषय पर ईश्वरलाल खत्री से की गई बातचीत भी आज के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 पर आप सुगम संगीत सुनेंगे। सांध्यकालीन सभा में 5:00 युवाणी कार्यक्रम होगा। आज का क्रम है साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। 5:45 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 6:00 सुनवाया जाएगा।

7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में आज प्रगतिशील कृषक शैलेंद्र बारचे से सोयाबीन में समसामयिक कृषि सलाह के विषय में जानकारी होगी। रात्रि 8:00 होगा सुर्खियों में कार्यक्रम। 8:15 पर आप सुनेंगे दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 का समय होगा चित्रगीत कार्यक्रम का और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन रात्रि 9:30 से 10:30 के मध्य सुनवाया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है।

0: एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
6: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
5: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
6: अरे काहे का मजा।
5: क्यों, क्या हुआ?
6: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
5: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
6: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
5: ये हुई ना बात।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: और सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क से भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, AI के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय। रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन CM मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जिला विकास सलाहकार समिति बैठक में भी सहभागी होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ संवाद भी करेंगे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होंगे। सभी जिलों में भी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंदसौर के गरोठ में आयोजित शिविर में आज अधिकारी गरोठ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जन समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करेंगे। उधर सतना में जिला स्तर के विभाग प्रमुख अधिकारी एक बस में बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर से सुबह 10 बजे मझगवां के लिए रवाना होंगे। इंदौर जिले में भी विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लसुड़िया परमार स्थित पंचायत भवन में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल पार्क में प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में यह संस्थान प्रतिवर्ष 2,000 युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल पाठ्यक्रमों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। वर्ष 2026 में 3,000 युवा प्रशिक्षित होंगे। ये संख्या निरंतर बढ़ेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में अभिमुखीकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। वे युवाओं के लिए निरंतर अवसर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डॉ. यादव ने कहा कि आज AI के दौर में हम तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक है।
1: आज वर्तमान के दौर में इतने तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही और उस टेक्नोलॉजी में आप भी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज AI का जमाना, हम सब उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो परमात्मा ने दी हुई बौद्धिक क्षमता है उसका विकास भी जरूर करते रहे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हरेक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हमारे अपनी काम की गरिमा और आपका हुनर और आपके मन की इच्छा शक्ति आपका मुकाम पर इंतजार कर रही।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तालमेल वाले सिस्टम सरकार के काम करने के तरीके का स्वाभाविक हिस्सा होने चाहिए। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात की इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। यह फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले की जांच पूरी कर ली गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व वाले जांच आयोग ने 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है। इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई संभावित है। आयोग ने जांच के दौरान इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए थे। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से भी लिखित बयान आमंत्रित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के साथ घटना के दौरान किए गए राहत और स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों की भी पड़ताल की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ट्रफ और डिप्रेशन के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतना के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद चित्रकूट की गुप्त गोदावरी में पानी बढ़ गया है। पहाड़ का पानी गुफाओं के ऊपर से बहने लगा है। सुरक्षा को देखते हुए चित्रकूट नगर परिषद ने दोनों गुफाएं बंद कर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिले में नर्सरी से पांचवीं क्लास तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। वहीं रीवा में 15 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीहर नदी के तट से कुछ दूरी पर स्थित निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं डिंडौरी जिले में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। हॉकी में आज एम्स्टलफीन में एफआईएच विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया है। दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन गोल करने में दोनों ही टीमें नाकाम रही। पूरे मैच के दौरान भारत का डिफेंस मजबूत रहा। भारत ने विशेषकर तनावपूर्ण दूसरे हाफ के दौरान इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में लोक आस्था के प्रमुख केंद्र संत सिंगाजी धाम में संत शिरोमणि सिंगाजी महाराज का 467वां समाधि दिवस आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है, जहां दिनभर वार्षिक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदसौर और आगरमालवा में संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगरमालवा में विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर सीएमएचओ कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मच्छर

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आज सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ में सुनेंगे समस्याएं। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में भविष्य में प्रतिवर्ष 10,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री ने कहा, एआई के दौर में अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी आवश्यक। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। और प्रदेश में फिर स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम सक्रिय, रीवा और सतना सहित कई जिलों में भारी बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मुकाम सिंह चौहान।
0: इंदौर परिक्रमा। जय जय जय जय जय जय जय। इंदौर परिक्रमा।
2: क्या बात है, क्या बात है, इंदौर की क्या बात है।
0: इंदौर परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रद्धालुओं का सभी प्रसिद्ध शिवालयों में भ्रमण इस माह सर्वाधिक रूप से रहता है। हमने इंदौर परिक्रमा के माध्यम से मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंगों, उज्जैन स्थित भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर स्थित भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पिछले दो सोमवारों में जानकारी उपलब्ध करवाई और आज हम आपको लिए चलेंगे मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थित भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। श्रावण मास में यहाँ का वातावरण शिवमय हो जाता है। पूरे श्रावण माह में मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, सहस्त्र घट स्नान और महाआरती का आयोजन होता है। मंदिर को विद्युत सज्जा और पुष्प मालाओं से सजाया गया है। नेपाल के पशुपतिनाथ के बाद विश्व में केवल मंदसौर में ही अष्टमुखी शिवलिंग विद्यमान है, जिसके कारण यहां देश भर के श्रद्धालु इन दिनों जल अर्पित करने के लिए मंदसौर पहुँच रहे हैं। उज्जैन की महाकाल सवारी की तर्ज पर मंदसौर में भी श्रावण मास में भगवान पशुपतिनाथ की भव्य शाही सवारी यानी पालकी निकाली जाती है। यह राजसी सवारी विशेष रूप से श्रावण मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाती है और इस बार ये सवारी 24 अगस्त 2026 को निकाली जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ का अष्ट धातु निर्मित चांदी या सोने का मुखौटा या प्रतिमा भवशाही पालकी में विराजमान की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपनी प्रजा का हाल चाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मंदिर परिसर से पूजन अर्चन के बाद सवारी शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और चौराहों से गुजरती है। रास्ते भर भक्त पुष्प वर्षा, आतिशबाजी और भजनों के साथ सवारी का स्वागत करते हैं। सवारी में ढोल, नगाड़े, झांकियां, पुलिस बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। इस विषय में आपको और अधिक जानकारी देने के लिए मंदसौर लिए चलते हैं।
4: मैं डॉक्टर घनश्याम बटवाल, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं आज मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर रूबरू हूं आपसे और मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शिवना नदी के किनारे स्थापित भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी दिव्य प्रतिमा विराजित है और श्रावण मास में यहाँ उत्सवी माहौल बना हुआ है। वैसे अगर आपकी जानकारी में बता दूं कि कोई 7.25 फीट ऊंचाई और

फीट गोलाई की और 46 क्विंटल वजनी यह एक पाषाण की बनी हुई प्रतिमा है। ये इसके अष्टमुखी जो प्रतिमा के विग्रह हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। शिवना नदी के किनारे से ये 1961 में मिली और स्थापित की गई थी। चैतन्य आश्रम के स्वामी ब्रह्मलीन प्रथेश्वरन जी महाराज के पावन कर कमलों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और पशुपतिनाथ नाम दिया गया। जब से ही इसे पशुपतिनाथ के नाम से ही जाना जाता है और ये न केवल मंदसौर अपितु पूरे मालवांचल में बहुत प्रचलित तीर्थ स्थान बन गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से पशुपतिनाथ लोक का प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया तो वह अद्वितीय छटा यहाँ देखने को मिलती है और श्रावण मास में उसका विशेष आनंद श्रद्धालु न केवल मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और दिल्ली तक के विदेशी भी यहाँ पे दर्शन करने पहुंच रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। पशुपतिनाथ की चार मुख जो ऊपर के हैं वो प्रतीक है बाल्यावस्था के जो पूर्व मुखी है, युवावस्था जो दक्षिण मुख में है और वृद्धावस्था जो उत्तर मुख की तरफ है और पूर्णावस्था जो पश्चिम मुख की तरफ है। ये उनके स्वरूप उनके विग्रह में इसी शिल्प कला शिल्प इतना सुंदर है कि वो प्रतीक होता है कि जैसे वो भगवान का ये स्वरूप है। ऐसे ही यहाँ पे मंदिर के अंदर भगवान कार्तिकेय गंगा गणेश और पार्वती की प्रतिमाओं के साथ ही आदि शंकराचार्य की भी प्रतिमा विराजमान है। वो शिखर पर स्वर्ण कलश लगा है और शिखर पर जो मंदिर है उसमें 24 अवतारों की मूर्तियां लगी हुई है। तो ये शिवना नदी के किनारे ये आकर्षक दृश्य जो निहारने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक अवसर बन गया है। और समीप ही अभी सहस्त्रलिंग भगवान महादेव की भी एक प्रतिमा स्थापित हुई है और वो भी आकर्षण का केंद्र है। वैसे तो पिछले 60 सालों से नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिवर्ष कार्तिक माह में एक माह का कार्तिक मेला पशुपतिनाथ मेला आयोजित किया जाता है जिसमें दूर दराज के श्रद्धालु पहुंचते हैं और अभी श्रावण मास में अभी विशेष आकर्षण भगवान शिव को जलाभिषेक रुद्राभिषेक और शिव शंकर की गूंज पूरे अंचल में गूंज रही है। तो आसपास के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कांवड़ यात्राएं लेकर और जय घोष करते हुए। इसके माध्यम से जो श्रावण सोमवार को पशुपतिनाथ की राजसी शाही सवारी का निकलना एक बहुत मंदसौर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। जब भगवान स्वयं पालकी में और रथ में विराजित होकर नगर में भ्रमण करते हैं और इसके साथ ही ढोल नगाड़े और नृत्य झांकियां साथ चलती है और स्थान स्थान पर भगवान पशुपतिनाथ की रजत प्रतिमा प्रतीकात्मक है परंतु उसका विग्रह बिल्कुल हूबहू स्वरूप है। तो उसका पूजन करते हैं अर्चन करते हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं दर्शन देने हमारे घर पधारे हैं। तो ऐसी भावना के साथ श्रद्धालु उसका पूरा आनंद लेते हैं और ये सोमवार 24 तारीख को ही ये मनाया जाने वाला है। इसकी आखिरी सवारी श्रावण सोमवार की राजसी सवारी निकलने जा रही है। इसी तरह श्रावण मास में प्रातःकालीन आरती मंडल और पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये राजसी सवारी का आयोजन भी पिछले 30 सालों से 3 दशकों से निरंतर जारी है और इस बार भी 24 को होने जा रहा है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो श्रद्धालु के भाव भगवान शिव के प्रति देवादिदेव महादेव के प्रति है वो उसका लाभ यहाँ के अंचल के हजारों ग्रामीण हजारों महिलाएं हजारों वृद्ध हजारों युवा इसका लाभ लेते हैं और ये लाभ लेने का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि ये भगवान महादेव सब पे कृपावंत होकर सबको कल्याण करें और यही भावना के साथ रुद्राभिषेक और अभिषेक निरंतर यहाँ चल रहा है। प्रातःकालीन आरती सायंकालीन आरती और राजभोग के दर्शन बहुत मतलब पूरी आरती के साथ पूरे ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है और अभी भी निरंतर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी अभिषेक चल रहा है जलाभिषेक हो रहा है और दृश्य रोज भगवान के विग्रह की
7.75 फीट ऊंची प्रतिमा के विग्रह पे रोज नित्य नए श्रृंगार होते हैं जो आकर्षण का केंद्र है और मन को लुभाते हैं। इन्हें भगवान की आत्मी स्वरूप छवि जो है लोग अपने हृदय में लेकर जाते हैं और उनका साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सावन मास में मनोकामना अभिषेक का एक विशेष अनुष्ठान कराया जा रहा है, वह भी लगातार निरंतर हर सावन मास में जारी है। इस बार भी किया जा रहा है और पंडितों की सन्निधि में ये रुद्राभिषेक होता है और वो सामूहिक मनोकामना अभिषेक, ताकि आपकी जो भी मनो में भाव हो उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव कल्याण के लिए हम सबको कृपा प्रदान करते हैं। यही भावना के साथ मैं आपसे डॉक्टर घनश्याम बटवाल मंदसौर से रूबरू हो रहा हूँ। जय महादेव।

0: भोले शंभु भोलेनाथ। भगवान शिव के अति प्रिय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अष्टमुखी भगवान पशुनाथ महादेव मंचोर में विराजित है, माँ सुगना के तट पर, और सारे देश भर के भक्त आज मंचोर के इस मंदिर में हैं। और हम सब मिलकर अपनी आस्था के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार हमारे अष्टमुखी को मनाने का काम कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, और भक्ति के साथ महाआरती के साथ आज का ये सावन पर हम आनंद ले रहे हैं। हमारा भगवान शिव अष्टमुख से और 24 नेत्रों से मंचोर सहित पूरे देश पर कृपा करें, उनके कृपा दृष्टि पूरे देश पर बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इस भावना के साथ आ रहे आज सारे मिलकर यहाँ आ रहे हैं। आरती प्रातःकाल में आरती मंडल के माध्यम से आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सैकड़ों की हजारों की संख्या में भक्त आज पूरे मंचोर में आनंद ले रहे हैं।
1: भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं बहुत लोग, और मनोकामना सारी पूरी होती है। यहाँ सभी लोग भक्त दर्शन के लिए आते हैं, और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, घूमने के लिए हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, और सभी की मनोकामना पूरी होती है। महादेव जी है सबसे अच्छे, महादेव जी सभी महिलाओं की इच्छा पूर्ति करते हैं। यहाँ
2: भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन भक्त लोग सभी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कर रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है इस श्रावण मास में, और भगवान पशुपतिनाथ जी का श्रृंगार बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया। आप देख रहे हैं सभी भक्त लोग सुचारू रूप से दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना व्यक्त कर रहे हैं, और भगवान पशुपतिनाथ जी का विशेष रूप से श्रृंगार पूजन से और अभिषेक कर रहे हैं। पशुपतिनाथ जी में पशुपतिनाथ लोग बन चुका है, भक्त लोग विशेष रूप से सभी का दर्शन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से दर्शन का लाभ ले रहे हैं, और बड़ी खुश होकर के और अच्छे से दर्शन करके जा रहे हैं।

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा, इंदौर परिक्रमा।
1: श्रोताओं, ये था साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे मुकाम सिंह चौहान। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत आपने सुना। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसका संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आनंद बख्शी और लता मंगेशकर का गाया ये मोम की गुड़िया फिल्म का गीत था। गीत आनंद बख्शी ने ही लिखा और इसका संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: हरियाली और रास्ता फिल्म का ये शीर्षक गीत आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, आइए आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार यानी आज दिन में 11:32 से 12 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम आज दिन में 11:32 से 12 बजे के मध्य FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित होगा। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे फोन कर प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731 यानी 0731। याद रखिएगा, ये कार्यक्रम आज दिन में 11:32 से 12 बजे के मध्य होगा। विविध भारती चैनल पर होने वाले इस कार्यक्रम में फोन करके आप साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ सुनील मेहता, जो कि DCP इंदौर कमिश्नरेट है, और नरेंद्र सिंह रघुवंशी, जो स्टेट साइबर सेल इंदौर से हैं, उनसे आप जान सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप विविध भारती इंदौर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: श्रोताओं, आज के सुनहरे पल कार्यक्रम का समय बस यहीं तक। अनुमति दीजिए शालिनी को।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
3: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
2: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
7: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
2: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
2: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स थर्ड हाई लेवल मीटिंग विद सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्जेस टू ब्रेक साइलोस एंड अडॉप्ट लॉन्ग टर्म विजन फॉर कंट्रीज फ्यूचर। Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries of the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
10: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole-of-government approach, greater coordination, innovative thinking, and collective ownership to address complex challenges and shape India's future with a long-term perspective. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
9: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into two parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
11: मैं देश की जनता को अपील कर
12: आई अपील टू माई फेलो सिटीजन्स टू रिफ्लेक्ट ओपन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पास्ट डिसीजन टू परमिट द डिविजन ऑफ वंदे मातरम इंटू टू पार्ट्स. वी हैव अनफॉर्चुनेटली विटनेस द रिग्रेटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिसीजन. आई देयरफॉर अर्ज ऑल सिटीजन्स टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट एनी सच कोर्स ऑफ एक्शन एंड टू रिजेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट परस्यूड बाय द कांग्रेस पार्टी.
11: देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी.
9: Union Home Minister Amit Shah arrived in Bagdogra yesterday evening on a 3-day visit to West Bengal. He was received at the Bagdogra Airport.

संपूर्ण भारत में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक है महाकाल। उज्जैनी में शिप्रा तट पर उनका भव्य विशाल एवं पुरातन मंदिर उज्जैन्यां महाकालः। महाकाल जिन्होंने प्रजा का सृजन किया, जिन्हें देवगण भी प्रणाम करते हैं, जो ध्यान करते योगियों के हृदय में निवास करते हैं, जो समस्त लोकों में आदि देव हैं, जो चंद्रकला धारण करते हैं और सर्प लपेटे रहते हैं।

0: वो क्षेत्र नाभि देश कहलाता है जहाँ महाकाल स्थित है। महाकाल काल चक्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। परम काल महाकाल काल गणना का इसलिए उज्जैन महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा। परंपरा में उज्जैन का वही महत्व रहा है जो ग्रीनविच का है। वराह मिहिर जैसे आदर्श ज्योतिर्विद ग्रंथकार उज्जैनी में हुए, जिनके लिखी पुस्तकों में भारतीय ज्योतिष मार्गदर्शन पाता रहा। परवर्ती काल में जयपुर के राजा जयसिंह ने ज्योतिर्गणना के लिए शिप्रा तट पर 18वीं सदी के प्रथम चरण में वैधशाला का निर्माण करवाया, जिससे आज भी ज्योतिर्गणना की जाती है। किसी समय उत्तर दक्षिण की रेखा उज्जैन से गुजरती थी। कहते हैं कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजरती है। शिप्रा के मध्य कर्क राजेश्वर का मंदिर इस तथ्य की पुष्टि करता है। पंडित आनंद शंकर व्यास बताते हैं,
1: उज्जैनी भी पुण्यप्रद पवित्र नदी उत्तर वाहिनी मोक्षदायिनी अमृतमय क्षिप्रा के पूर्वी तट पर बसी हुई है। यह नदी उत्तर वाहिनी है। उत्तर दिशा देवताओं की दिशा है। उत्तर की ओर देव दिशा की ओर प्रवाहित होने से स्नान दान करने वाले आस्थावान धर्म प्राण जनता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्क राशि से प्रयागराज तक, कर्क राशि से मकर राशि पर्यंत 6 राशियों में नदी का विभाजन है। नरसिंह तीर्थ से लेकर रामघाट पर्यंत सिंह राशि का क्षेत्र होने से सिंह राशि के गुरु का सिंहस्थ का स्नान इसलिए रामघाट पर किया जाता है। लाखों यात्री कार्तिकी पूर्णिमा पर रामघाट पर स्नान करते हैं। इसी अवसर पर नगर निगम द्वारा शिप्रा के पवित्र तट पर कार्तिक मेले का आयोजन होता है। शिप्रा नदी मात्र सिंचाई और पेयजल पूर्ति का मात्र साधन नहीं है, उससे भी बढ़कर कोटिशा जनता की आस्था का केंद्र है, जहां आकर समय समय पर लोग अलौकिक पुण्य की कामना से ज्ञात अज्ञात किए गए अपने पापों के प्रायश्चित के निमित्त और मोक्ष की कामना से स्नान दान करते हैं। वर्तमान में यहाँ का जल स्वच्छ नहीं है, गंदगी भी विशेष है। कई गंदे पानी के नालों के स्रोत मिलकर नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। जिस पानी को देखकर आज का सभ्य पठित समाज भयाक्रांत हो जाता है, वहीं ग्रामीण आस्थावान लोग इसे गंदे पानी से ही आचमन कर लेते हैं, पी भी लेते हैं और हजारों लाखों जनता आज भी ऐसे परिस्थिति में स्नान दान और आचमन करती जा रही है। इस पर भी कभी ऐसे समाचार सुनने को नहीं मिला कि यहाँ से स्नान करने गए लोग में से हजारों बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए हों। इसे हम क्या कहेंगे, जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के लिए जो पानी विषाक्त है, वही आस्थावान धर्म प्राण समाज के लिए अमृत तुल्य है, इसे क्या कहेंगे। किंतु मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि क्षिप्रा की यही स्थिति बनी रहे। आवश्यक यह है कि इसे प्रदूषित मुक्त किया जाए और स्वच्छता शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। हर हर महादेव शंभो, अवंती महाकाल क्षिप्रा।

शिप्रा का अमृत सा मनोहर मधुर जल अनजाने काल से अगणित जनमानस को आकर्षित करता रहा है, परंतु अब कतिपय वर्षों से प्राकृतिक वर्षा की उपेक्षा और जनता द्वारा अनवरत दोहन के कारण शिप्रा जलहीन होती जा रही है। नदी में अब न जल रहा, न जल के प्राणी रहे, न तट की वनस्पतियां रही, सब दूर बस सूखा ही सूखा है। नगर की गंदगी से शिप्रा में निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उस प्रदूषण के निराकरण के विभिन्न प्रयास होते रहते हैं, परंतु वे निरर्थक होते जा रहे हैं। बहाव के अभाव में नदी में गाद भर जाती है। उसे गर्मी में प्रति वर्ष खोद खोद कर नदी को शुद्ध किया जाता है।

0: पर्यावरण वेत्ता संत पंडित कमल किशोर नागर जी ने जन समूह को साथ में लेकर शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्हीं के शब्दों में,
1: शिप्रा का उद्गम हुआ है वहाँ से लेकर के तो उज्जैन तक, जहाँ पानी का लेवल शिप्रा के आसपास ऊपर हो वहाँ बोरिंग लगा के और वो जल शिप्रा में डाला जाए और वहाँ से उसको प्रवाह किया जाए ताकि वो बहता हुआ उज्जैन तक आए, ताकि सिंहस्थ पर्व में एक ताजा जल और बहती हुई क्षिप्रा में लोगों का स्नान हो, जल भी निर्मल हो और क्षिप्रा मैया की महिमा बढ़े। क्षिप्रा के बीच में बड़े बड़े कुएं बना देना चाहिए। कुआं खोदने में एक तो गहरीकरण हो जाएगा, दूसरा जल स्तर बढ़ जाएगा और वो बारिश के समय उन कुओं का चार्जिंग भी हो जाएगा, कहीं विसर्जन के मामले में, कहीं कोई फूल पत्ती मूर्ति अन्य हवन सामग्री जो भी कुछ प्रवाह होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसी में करेंगे, कुछ लोग रोकते हैं। इस क्षेत्र में जो पवित्र है और जहां पर लोग स्नान में आस्था रखते हैं वहां पर कोई भी चीज का विसर्जन न हो और उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। हमने शुरू में सोचा कि भाई क्षिप्रा मोक्षदायी नहीं है, सारे क्षेत्र के लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष की आस्था रखते हैं। सबने हड्डी डाल दी, अस्थि पंजर बाल अन्य चीजें डाल करके क्षिप्रा को अशुद्ध कर दिया, लेकिन कोई ये भी तो सोचे कि जो अपन ने इसको प्रदूषित किया वापस इसको शुद्ध भी तो करें। तो हमने सोचा कि दुनिया प्रदूषित करे, अपने को सबसे बड़ा यदि कोई पवित्र कार्य है तो वो ये है कि इसको शुद्धिकरण करना। लोगों की आस्था उज्जैन क्षिप्रा शुद्धि में पहली बार इतनी जोरदार थी और इतनी ताकत से लोग उमड़े थे कि गेती फावड़े भी कम पड़ गए, प्रशासन की व्यवस्था छोटी पड़ गई। सारा जनमानस जिस तरह अपने घर की सफाई दीपावली पे करता उससे भी ज्यादा उत्साह से लोगों ने कीचड़ में उतर के और सेवा करी। सर्वप्रथम तो महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि वो उस अकाल को दूर करे और अच्छी वृष्टि हो ताकि क्षिप्रा मैया बहती रहे। दूसरा, जनमानस से आह्वान करेंगे कि आप इसको प्रदूषण से रोकें। शासन प्रशासन से आह्वान है हमारा कि जहां क्षिप्रा का उद्गम है वहां एक बहुत बड़ा तालाब निर्माण हो और वहां यदि एक बहुत बड़ा बांध बन जाए तो उस जल से नीचे का जो जल स्रोत है वो बढ़ेगा और उस बांध से पानी छोड़ेंगे वो क्षिप्रा का ही जल रहेगा। इस क्षिप्रा के उद्गम पे पारिजात पर्वत है और एक अच्छी जगह है जहाँ पर एक अच्छे तालाब का निर्माण हो सकता है, वो तालाब का निर्माण करें। शासन ने किया तो ठीक, नहीं तो हम अपने मन में एक संकल्प लेके बैठे हैं कि यदि ईश्वर की कृपा रही, माँ क्षिप्रा साथ देगी, सद्बुद्धि देगी, तो हम भविष्य में कभी भी इस योजना को सफल बनाने का प्रयास करेंगे।
2: शिप्रा तट के रामघाट पर श्रद्धालुओं के भजन सुनाई देते हैं। शिप्रा के तट पर दो नगर महत्वपूर्ण हैं। एक तो सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक नगरी उज्जैनी है जो अवंती या मालव प्रदेश की चिरकाल तक राजधानी रही, और दूसरा अपेक्षाकृत छोटा नगर है महितपुर। मध्यकाल में महितपुर को मोहम्मदपुर कहते थे। कहते हैं मोहम्मदपुर का ही तद्भव रूप वर्तमान महितपुर है। ये नगर आज उज्जैन जिले का तहसील स्थल है और पुरातात्विक दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल का है। अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण उज्जैनी के प्राचीन काल में कई नाम प्रचलित रहे। सार्वभौम नगरी विशाला, कनकश्रृंगा, प्रतिकल्पा, पद्मावती, नंदिनी, चूड़ामणि, पुष्पकरंडिनी, कुशस्थली आदि। ये सतयुग में कुशस्थली, त्रेता में पद्मावती, द्वापर में अंबिका और कलयुग में उज्जैनी कहलाई। उज्जैनी भी प्रागैतिहासिक काल से ही पुरातत्व की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। उज्जैन का गढ़ कालिका क्षेत्र में उज्जैन की प्राचीन बस्ती थी। वहाँ उत्खनन से पुरा सभ्यता का ज्ञान होता है। वैश्या टेकरी मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप का अवशेष है, वहाँ भी उत्खनन हो चुका है। इसी क्षेत्र में बुद्ध कालीन प्रद्योत का प्रसिद्ध कनकताल वन था। गढ़ कालिका क्षेत्र में तत्कालीन भव्य बस्तियां और राजप्रसाद थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि ने उज्जैनी में ही महर्षि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं आजकल सांदीपनी आश्रम विद्यमान है। वहां पर वल्लभाचार्य ने भागवत की कथा की थी। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी मित्रविंदा उज्जैनी की ही थी।
0: यही वीणा प्रवीण वत्सराज उदयन राजा प्रद्योत का बंदी था, परंतु प्रद्योत की पुत्री राजकुमारी वासवदत्ता उसके साथ हाथी पर बैठकर भाग गई थी। कला तथा साहित्य में ये कथा सदियों तक प्रस्तुत की जाती रही। मालवा के गांव के बड़े बूढ़े इस रसीली कथा को कहने में बड़े दक्ष थे। इस बात को महाकवि कालिदास ने भी रेखांकित किया है।
3: प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान।
0: राजकुमार के रूप में उज्जैनी में मौर्य बिंदुसार रहा और अशोक भी। अशोक की संतानें महेंद्र और संगमित्रा थीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था।
2: विदेशी शकों को पराजित कर कृत मालव अथवा विक्रम संवत का प्रवर्तक भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध विक्रमादित्य इसी उज्जैनी का राजा था। इसके सभासदों में कालिदास आदि नवरत्नों ने साहित्य एवं ज्ञान की विभिन्न धाराओं में मानदंड स्थापित किए थे। कहते हैं इसी विक्रम का अग्रज भर्तृहरि था, जो कवि दार्शनिक व्याकरण के रूप में विद्वानों तथा रसिकों में लोकप्रिय था। भर्तृहरि का योगी होकर साधु बन जाने की घटना ने उसे लोकनायक बना दिया। विक्रमादित्य के समान भर्तृहरि पर भी पारंपरिक तथा लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। काव्य नाटक मालवी माच और नौटंकी में आज भी राजा भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है।
0: कहते हैं शूद्रक भी उज्जैन का राजा था। इसने उज्जैन से संबंधित मृच्छकटिकम नाटक और पद्म प्राभृतक एकल एकांकी की रचना की थी। इनमें तत्कालीन उज्जैनी का लोक जीवन प्रतिबिंबित होता है। सातवीं सदी के राजा हर्ष विक्रमादित्य ने नाट्यवार्तिक के साथ ही रत्नावली प्रियदर्शिका आदि नाटिकाएं भी रचकर नाट्य साहित्य की श्रीवृद्धि की थी। राजा मुंज न केवल कवि तथा योद्धा और विजेता था, अपितु विद्वानों का आश्रय दाता भी था। मुंज के विषय में कहा गया, गते मुंजे यशः पुंजे निरालंबा सरस्वती। मुंज के देहावसान से सरस्वती निराश्रित हो गई।
2: इसी विद्वत परंपरा का अनुपालन राजा भोज ने भी किया। वो कवि विद्वान विविध विषयक ग्रंथों का प्रणेता और विद्वानों का अद्वितीय आश्रयदाता ही नहीं था, अपितु कुशल विजेता भी था। उसने महाकाल का मंदिर बनवाया था। राणा हम्मीर ने उज्जैन में शिप्रा स्नान कर महाकाल के दर्शन किए थे। जयपुर के राजा जयसिंह ने उज्जैन में ज्योतिष गणना के लिए जो वैधशाला बनवाई थी वो आज भी शासन के संरक्षण में सक्रिय है। राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणवी ने महाकाल के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण ही नहीं करवाया, अपितु रामघाट सहित 84 महादेव के मंदिर बनवाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण ला दिया। पंडित सूर्यनारायण व्यास ने अवंती तथा मालवा के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में योगदान दिया। कविवर सुमन गाते रहे, मैं शिप्रा सा तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। समय की धारा में शिप्रा की धारा छल छलाती रही।
4: शिप्रा जी का तट पर जाया जुग जुग घड़ा था।

0: शिप्रा का तट लोक प्रसिद्ध सिद्धों और तपस्वियों की साधना आराधना भूमि के रूप में विख्यात है। महर्षि संदीपनी का आश्रम शिक्षा का सर्व प्राचीन केंद्र रहा। यहाँ अकाल से मालवा की रक्षा के लिए संदीपनी ने महाकाल की तपस्या की। महात्मा बुद्ध के समकालीन महाकात्यायन ने शिप्रा तट से ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी समय थेरी इसीदासी ने गाथाएं रची। जैन काल का आचार्य तथा शपणक जैसे विद्वान आचार्य साधु विक्रमादित्य के युग में हुए। शिप्रा तट पर ही मत्स्येंद्र नाथ की समाधि और भर्तृहरि की आराधना भूमि रही। हरि स्वामी ने शतपथ की टीका रची और उव्वट ने यजुर्वेद की यही व्याख्या की। इस भूमि पर जैन साधुओं ने निरंतर तपस्या की। स्वामी जदरूप के दर्शन के लिए जहांगीर स्वयं कालियादेह महल से नौका द्वारा शिप्रा मार्ग से पहुंचा था। आज भी साधकगण इस भूमि पर साधना आराधना के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। लोग उज्जैनी के सिद्धनाथ और रामघाट पर तर्पण कर पितरों को संतुष्ट करते रहे। शिप्रा तट के घाटों का बखान करते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित अभिमन्यु डिब्बेवाला कहते हैं,
1: शिप्रा त्रिवेणी से शिप्र गति से प्रवाहित होती हुई लाल पुल और भू की माता के नव निर्मित घाटों को स्पर्श करती, कर्कराज के घाट पर अपनी छटा को बिखेरती, कर्कयन रेखा पर अलसाती नरसिंह घाट की अगौर अग्रसर होने लगती है। नरसिंह अवतार का स्मरण कराती पिशाच मुक्त तीर्थ की ओर बढ़ने लगती है। कुछ आगे प्रवाहमान होते ही नीलगंगा का संगम होता है। इससे आगे रामघाट पिशाच मुक्त तीर्थ हैं। भगवान राम ने भी महाराजा दशरथ के पिंडदान किए थे। शिप्र गति शिप्रा प्रवाहित हो मल्लिकार्जुन तीर्थ रविदास घाट से आगे गंधवती घाट पर अपनी लहरों से तट को आक्रांत कर देती है। पुनः अपनी लहरों को समेटती सुखचाती हुई चक्रतीर्थ घाट रणजीत हनुमान घाट पहुंचती है। चक्रतीर्थ महाश्मशान है। दानवीर कर्ण का शव विष्णु के सुदर्शन चक्र पर रख यही दाह संस्कार किया गया था, तभी से यह चक्रतीर्थ है। चक्रतीर्थ से राजमहल घाट और से आगे बढ़ती ही ऋणमुक्तेश्वर होते हुए ओखलेश्वर तथा विक्रांत भैरव तथा काल भैरव के विशाल घाटों को अपनी पहचान बताती हुई अलसाई सी गंगा घाट होते हुए मंगलनाथ घाट के विराट स्वरूप को रेखांकित करती हुई अंगार का ईश्वर घाट का सामिप्य प्राप्त करते हुए शक्तिभेद तीर्थ सिद्धनाथ घाट पर पहुंच जाती है। सिद्धभट को अपनी लहरों से अभिचिंतित करती हुई कालियादेह महल की ओर द्रुत गति से शिप्रा प्रवाहित होने लगती है। सूर्य मंदिर के समीप शिप्रा का स्वरूप विराट होते हुए बावन कुंडों के मध्य विपुल जलराशि बांटती हुई आगे बढ़ जाती है। जयति जयति जय शिप्रे जय शिप्रे।
2: शिप्रा के तट पर भारत के समस्त तीर्थों की आराधना और यात्रा की जा सकती है। यहाँ गया के समान तर्पण संभव है। गंगा जैसी महनीय शिप्रा है, वटों में यहाँ सिद्धवट है, प्रयाग जैसी यहाँ त्रिवेणी है, ज्योतिर्लिंग महाकाल है, भगवान श्री कृष्ण की वैष्णव शिक्षा स्थली है, सब धामों का समन्वय यहाँ चार धाम है, बौद्धों तथा जैनों की तपोभूमि तीर्थ है, ये शैव नगरी है, ये वैष्णव नगरी है, ये सिद्धों की नगरी है, ये साधकों की नगरी है।
0: ऐसी सिद्ध भूमि पर भक्तों तथा आराधकों की निरंतर यात्राएं होती रहती है। इन सब में महत्वपूर्ण है महाकाल यात्रा। शिप्रा स्नान कर विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद महाकाल के दर्शन किए जाते हैं। महाकाल की सांध्य आरती के मनोहर दृश्य को देखने का आग्रह महाकवि कालिदास भी मेघ से करते हैं।

0: पुराण प्रसिद्ध 84 महादेवों की यात्रा श्रावण में की जाती है। अधिक मास में सप्त सागर की यात्रा करने की भी परंपरा है। शनिश्चरी अमावस्या को त्रिवेणी की और मंगलवारी अमावस्या को मंगलनाथ की यात्रा की जाती है। इन सब में महत्वपूर्ण है पंचकोसी यात्रा। ये पंचेशानी या पंचक्रोशी यात्रा भी कहलाती है। महाकाल को केंद्र में मानकर उज्जैन के चारों ओर चार द्वार पर प्रायः 5-5 कोस दूर स्थित महादेवों की ये यात्रा हजारों नरनारी सामूहिक रूप से वैशाख मास में पैदल ही करते हैं। तब चल मेले का दृश्य उपस्थित हो जाता है। कहीं भजन, कहीं कथा प्रवचन, कहीं स्नान ध्यान, सब एक साथ संपन्न होता रहता है। इसी समय अष्ट तीर्थ यात्रा भी की जाती है।
1: उज्जयिनी का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है सिंहस्थ महापर्व। अमृत कुंभ से अमृत बिंदु हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जयिनी में छलक कर गिरी। अतः इन सभी चारों स्थानों पर 12-12 वर्षों में कुंभ का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक विशाल मेला लगता है। उज्जैन का कुंभ सिंहस्थ कहलाता है क्योंकि सिंह राशि में गुरु स्थित रहता है। तब 12वें वर्ष वैशाख मास में शिप्रा तट पर ये मेला लगता है। इसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के साधु संत और श्रद्धालु धर्म लाभ लेने के लिए शिप्रा तट पर एकत्र होते हैं। मास भर तक व्रत तपस्या स्नान दान करते हैं। ये उज्जैनी तथा मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन होता है। उज्जैन में सन 2004 में सिंहस्थ मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले की महिमामय जानकारी दे रहे हैं सिंहस्थ मेला अधिकारी उज्जैन श्री अजीत केसरी।
2: कुंभ मेला का आयोजन होता है, पहली बात तो हम लोगों ने ये किया है कि शिप्रा नदी से जो पेयजल का जो उठाव होता था, वो पेयजल का उठाव हमने शिप्रा नदी से लेना बंद कर दिया है, जिससे शिप्रा नदी में अधिक से अधिक जल उपलब्ध रहेगा गर्मी के मौसम में भी। दूसरी व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि शिप्रा नदी में उज्जैन के ऊपर लगभग 15 स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं और पानी रोकने के साथ में वहां से धीरे धीरे पानी जो है स्नान के समय और मेले के समय छोड़ा भी जाएगा। इसके अलावा शिप्रा नदी के ऊपरी हिस्से में लगभग 850 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में भू जल के संवर्धन का एक वृहत अभियान लिया जा रहा है जिला पंचायतों के माध्यम से, जिसमें प्रमुख काम जिला पंचायत उज्जैन का है, जिसमें वो डबरियां बनवा रहे हैं, कुछ बड़े बड़े जो संरचनाएं होती हैं गेबियन स्ट्रक्चर्स, परकुलेशन टैंक आदि का भी वो निर्माण कर रहे हैं। घाटों की लंबाई बहुत बढ़ाई जा रही है ताकि लोग जो आएंगे, प्रमुख उनका उद्देश्य शिप्रा नदी में स्नान करना होता है। उज्जैन और इंदौर दोनों शहर के जो गंदे नाले मिलते हैं, इन सभी नालों को हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं और ये पानी अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके साफ करके उसके बाद ही नदी में वापस छोड़ा जाएगा।
0: श्रावण मास में प्रति सोमवार महाकाल की सवारी शासकीय आयोजन के रूप में भव्यता से निकलती है। उज्जैनी महाकाल तथा शिप्रा के कारण तीर्थ नगरी है। यहाँ वर्ष भर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते ही रहते हैं। शिप्रा के पास पहुँचे तो कैसे बहन करती है अनुरोध शिप्रा से कि भाई को आने दे, मैं तेरी अर्चना करती हूँ।

0: विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी शिप्रा का स्मरण करते हुए महाकाल की आरती रचते गाते अघाते नहीं, वे अपने स्वप्नलोक की उज्जैनी में उस आरती की अनुगूंज कुछ इस प्रकार प्रकट करते हैं।
1: दूरे बहु दूरे स्वप्नलोक उज्जैनी पूरे खुजिते गेछिनु कवि।

0: मालवा की गंगा माँ शिप्रा, अभी आपने ये रूपक सुना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: आइए श्रोताओं, लोक संगीत में आज हम आपको चंद्रप्रकाश सोनवे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: लोक संगीत में आज आप चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत सुन रहे हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: लोक संगीत में आज आपने चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत सुने।
1: हेलो
2: हेलो,
1: आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया ओटीपी बताएं।
2: ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है।
3: श्रोताओं, विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हर शुक्रवार सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच लेकर आता है साइबर जागरूकता पर केंद्रित विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 बजे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे इंदौर कमिश्नरेट से DCP सुनील मेहता जी और स्टेट साइबर सेल इंदौर से DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी। तो आप इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें और आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी जिज्ञासाएं और आपकी समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टूडियो कोड है 0731। तो सुनना ना भूले शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच हमारा विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। और विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हो रहे हैं DCP इंदौर सुनील मेहता जी और DSP स्टेट साइबर सेल नरेंद्र सिंह रघुवंशी।
4: जब भी आपको करे जो कोई परेशान, हो जाओ खबरदार होशियार, सोच समझ और देख।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर अब वक्त है सुगम संगीत का। आज हम आपको उमेश भट्ट की गायी गजलें सुनवा रहे हैं।

0: सुगम संगीत में आज आपने उमेश भट्ट की गायी रचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया ओटीपी बताएं।
2: ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है।
3: श्रोताओं, विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हर शुक्रवार सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच लेकर आता है साइबर जागरूकता पर केंद्रित विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 बजे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे इंदौर कमिश्नरेट से DCP सुनील मेहता जी और स्टेट साइबर सेल इंदौर से DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी। तो आप इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें और आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी जिज्ञासाएं और आपकी समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो सुनना ना भूले शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच हमारा विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। और विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हो रहे हैं DCP इंदौर सुनील मेहता जी और DSP स्टेट साइबर सेल नरेंद्र सिंह रघुवंशी।
4: जब भी आपको करे जो कोई परेशान, हो जाओ खबरदार होशियार, सोचो समझो और देखो

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर अब वक्त है शास्त्रीय संगीत का। आज हम आपको बहाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन सुनवा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रुद्र वीणा पर बजाया हुआ राग रागिनी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने बहुद्दीन डागर का रुद्र वीणा पर बजाया राग रागिनी तोड़ी सुना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।
1: भोपाल है, थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी है।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। छतरपुर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना, उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड छतरपुर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार थे। मुख्य अतिथि ने कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का प्रसारण किया गया। समारोह में श्री अहिरवार ने 3 लोकतंत्र सेनानियों और 2 भूतपूर्व सैनिकों का शॉल श्रीफल और पुष्पमाला से सम्मान किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। छतरपुर जिले के केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ग्राम सुखवाहा के मैनारी में विस्थापित परिवारों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन विश्वास कार्यक्रम के तहत बीते 18 अगस्त को मैनारी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और विस्थापित परिवारों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना गया। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालन के लिए 25 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही भैंस पालन के लिए 11, बकरी पालन के 2 और पशु शेड के निर्माण के लिए 2 आवेदन प्राप्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 36 व्यक्तियों का परीक्षण का दवा वितरित की गई। इसके साथ ही आयुष विभाग द्वारा 42 व्यक्तियों को दवा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 91 आवेदन में से 88 आवेदन पात्र पाए गए, जिन्हें स्वीकृत किया गया। वहीं बीपीएल सूची में नाम जोड़े जाने के लिए 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 व्यक्तियों का नाम जोड़े जाने की कार्रवाई की गई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। पीएम आवास के लिए 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर समस्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। ग्रामवासियों से विस्थापन के संबंध में चर्चा के दौरान विस्थापितों द्वारा ग्राम साड़ा और ग्राम भरतला में रहवासी प्लाट उपलब्ध कराने के लिए सहमति बनाई गई। छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ने हाल ही में छतरपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता और सिविल सर्जन डॉ. शरद चौरसिया उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जिला अस्पताल के सभी तलों पर भ्रमण कर ओपीडी रूम, एसएनसीयू रूम, एएनसी वार्ड, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एनआरसी और पीडियाट्रिक वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सफाई इंचार्ज को निर्देश दिए कि अस्पताल में मरीजों के अटेंडरों की बैठक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, साथ ही बेंच लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। बारिश से अस्पताल में पानी लीकेज पाए जाने पर उसको तत्काल तरपोलिन शीट लगाकर सही करने के निर्देश दिए गए। जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विकास एवं परीक्षा परिणामों में सुधार के उद्देश्य से 19 उत्कृष्ट छात्रावासों में विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नमः शिवाय अर्जरिया की अध्यक्षता में 12 अगस्त को आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों का चयन किया गया। छतरपुर जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत छतरपुर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में नगर पालिका से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे छतरपुर विधायक ललिता यादव ने रवाना किया। बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने बिजावर में तिरंगा यात्रा निकाली, जबकि राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने बमीठा से खजुराहो तक लगभग 100 युवाओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। वहीं पत्रकार संगठन के सदस्यों ने भी छतरपुर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। पूरे जिले में तिरंगे को लेकर एक उत्साह का वातावरण सप्ताह भर देखने को मिला। वहीं अब बात करते हैं जिले के मौसम की। छतरपुर जिले में इस वर्ष सामान्य बारिश हो रही है और जून तथा जुलाई माह में बहुत कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन अगस्त माह में बारिश ने जोर पकड़ लिया है। अभी तक छतरपुर जिले में 568 मिलीमीटर यानी कि 22.4 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते वर्ष इसी अवधि में 1083.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि 42 इंच थी। इस वर्ष सर्वाधिक बारिश जिले के गौरीहार विकासखंड में 803 मिलीमीटर और बिजावर में सबसे कम 433 मिलीमीटर दर्ज की गई है। किसानों ने अपने खेतों में ज्यादातर मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और तिल की फसल लगाई है। कृषि विभाग के मुताबिक फसल के लिए अभी तक यह अच्छी बारिश साबित हुई है। जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने शामिल होकर कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये समरसता संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंचकर जन जन को संत रविदास जी के आदर्शों को पहुंचाने का काम करेगी। कार्यक्रम में छतरपुर विधायक ललिता यादव और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। छतरपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था और वाचक थे अभिषेक कटियार।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।

0: एनएच हॉटलाइन कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। हमसे नए जुड़ने वाले श्रोताओं के लिए हम बता दें हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर सकते हैं और अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। लीजिए अब लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी
1: जी नमस्कार बड़ी दीदी, कैसे हैं?
0: बस अच्छे हैं, आप बताइए।
1: आनंद मंगल कुशल पूर्वक, आप बुजुर्गों की दुआएं हैं।
0: जी जी जी, आपने हमको बुजुर्ग बना दिया। बताएं
1: ना, बच्चे बोले तो बुजुर्ग बोलो, बात है कि जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं हमारे जैसे, तो वो बच्चे की गिनती में आते ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो लोग बोलते ना कि भाई बुजुर्ग और बच्चे में क्या फर्क है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
1: हाँ तो भाई हमारे दिन ऐसे आ गए ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई।
0: हम दुआ करेंगे कि आप बहुत साल जिए और खुशहाल जिंदगी जिए
1: और आकाशवाणी सुनते रहे।
0: जी बिल्कुल। अब बताएं गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत मेरा था का।
0: गीत के
1: बोल? बोले झुमका गिरा है बरेली की बाजार में।
0: जी जी जी,
1: पर अभी तक तो झुमका मिला नहीं है।
0: झुमका मिला नहीं? देखिए बरेली फेमस हो गया इस बात के लिए कि वहाँ झुमके अच्छे मिलते हैं। पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन फेमस तो है, गीतों ने उसको फेमस कर दिया है।
1: फेमस कर दिया। और एक तो क्या है, ये फोन भी कॉल भी इतना हाथ दुखाना पड़ता है, इतनी उंगलियां दुखाना पड़ती, इतना दिलो दिमाग दुखाना पड़ता है, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से फोन कॉल लगता है, तो कभी कभी नहीं लगता तो ऐसा दिलो दिमाग पागल हो जाता है।
0: जी ये तो सही बात है। देखिए बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बहुत सारे श्रोता लगातार लगे होते हैं, मेहनत तो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो बहुत है, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। जी जिसका मुकद्दर जाग गया वो उसका जाग गया।
0: सही सही बात है,
1: क्या बात करते हैं, ये तो मुकद्दर वाली बातें हैं।
0: वो देखिए आज तो आपका पहला ही फोन कॉल लग गया।
1: जी जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया आपको भी
1: करके।
0: जी
1: और हमारे दोस्त पेंटर विजय मोबिया है, हमारी हसी नवीन मंसूरी है, वो भी बहुत सुनती प्रोग्राम। हाँ इंदौर के, और हमारे सब प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अभी मेरी नजर में आकाशवाणी इंदौर सबसे नंबर वन पे है।
0: क्या बात है, धन्यवाद आपका इस बात के लिए। जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। खत्री जी सुनिए रेडियो सेट पर। धन्यवाद
1: जी, धन्यवाद।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: हेलो
3: हेलो,
2: आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया OTP बताएं।
3: OTP? बैंक तो OTP नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है।
4: श्रोताओ, विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हर शुक्रवार सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच लेकर आता है साइबर जागरूकता पर केंद्रित विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 बजे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे इंदौर कमिश्नरेट से DCP सुनील मेहता जी और स्टेट साइबर सेल इंदौर से DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी। तो आप इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें और आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी जिज्ञासाएं और आपकी समस्याएं आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो सुनना ना भूले शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच हमारा विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। और विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हो रहे हैं DCP इंदौर सुनील मेहता जी और DSP स्टेट साइबर सेल नरेंद्र सिंह रघुवंशी।
5: जब भी आपको करे जो कोई परेशान, हो जाओ खबरदार होशियार, सोचो समझो और देखो।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी बोले, बताएं आपका गीत कौन सा सुनेंगे?
1: करिश्मा कुदरत का फिल्म का सुनवा दीजिए।
0: करिश्मा कुदरत का फिल्म का कौन सा गीत?
1: हम दोनों हैं अनजान मगर पहचान पुरानी लगती है।
0: जी सूर्य प्रताप जी, बताएं अपने बारे में, आपका फोन अक्सर लग जाता है, आप क्या जादू करते हैं ये बताइए।
1: नहीं जादू कुछ नहीं, ये तो कोशिश का नतीजा है, कोशिश करते रहते हैं तो लग जाता है।
0: जी बहुत सारे श्रोता हैं जिनकी शिकायत होती है कि हमारा फोन नहीं लगता, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका फोन लग जाता है?
1: नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई वो नहीं है मेरे पास, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ और सभी श्रोताओं से भी यही कहूंगा कि कोशिश करें, आपका फोन एक ना एक दिन जरूर लगेगा।
0: जी जी चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सो योर प्लेस और माइन,
3: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
2: कॉन्डम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: हेलो एमएच हॉटलाइन।
6: जी नमस्ते।
5: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
6: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
5: जी प्रेम सिंह जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
6: फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है।
5: जी और बोल।
6: गाने, हाँ जी, गाने के बोले तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे।
5: जी आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे। बताएं नागदा में बारिश के क्या हाल हैं?
6: जी बारिश पिछले हफ्ते तो काफी अच्छी हुई थी यहाँ पर।
5: जी
6: और आपको बताऊँ, दो दिन पहले भी मतलब अच्छा सा सुबह आधे घंटे से पानी गिर गया था यहाँ पर, लेकिन अभी तो थोड़ा मौसम साफ है और ठंडी हवाएं चल रही है और बीच बीच में धूप भी आ रही है।
5: अच्छा, मतलब बारिश पर्याप्त हो चुकी है नागदा में या कमी है इस साल?
6: अभी तो मतलब फसलों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अगली फसल के लिए तो हमें और पानी चाहिए होता है।
5: जी,
6: और इस फसल में भी पकने के लिए पानी वो लगेगा।
5: अच्छा जी। अभी और पानी का इंतजार है।
6: जी बिल्कुल
5: जी, चलिए आपको सुनवा रहे हैं प्रेम सिंह जी आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने का।
6: जी थैंक यू सो मच।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: हेलो एमएच हॉटलाइन।
5: हेलो, नमस्ते मैम।
4: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा
4: हूँ। नरेश जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
5: जी, एक राग पीलू पर आधारित है, फिल्म निरंकर रिम जिम गिरे सावन, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में
4: जी,
5: और राहुल देव बर्मन शफाव ने इसमें संगीत बना दिया है
4: जी। नरेश जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्यारा सा गुड मॉर्निंग आपको भी। आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री
1: जी
0: जी तनुश्री जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगी?
1: फिल्म का नाम है हम साथ साथ है, उसका मैम टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल तनुश्री जी आपको सुनवाएंगे। आपने बहुत दूर से हमें फोन किया है। आप बताएं पढ़ती हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती हैं? अच्छा,
1: हाँ,
0: कितने सालों से सीख रही हैं?
1: 3 साल।
0: 3 साल से सीख रही हैं। और
1: हाँ
0: गाना गाना आता है आपको?
1: जी मैम, दोनों सीख रही हूँ ना, गाना गाना भी और हारमोनियम बजाना भी।
0: अच्छा चलिए फिर ये गीत गुनगुनाइए, फिर हम आपको सुनवाते हैं।
1: जी, फूलों में खुशबू है इस दिल में, एक तुम हो जन्म के साथ ही, हम साथ साथ ही, जन्म के साथ ही, हम साथ साथ ही। जी मैम,
0: बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गाया आपने। तनुश्री जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ।
0: हाँ श्रीनिवास जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हनीमून का गाना।
0: गाने के बोल बताएं
1: ओ राजी ओ राजी हो।
0: जी। आपको गीत जरूर सुनवाएंगे। कैसे हैं श्रीनिवास जी?
1: हाँ देखो।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा देते हैं। सुनिए
1: हाँ
0: अपने रेडियो सेट पर।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते दीदी, मैं आलम दिलकश बोल रहा हूँ, जत्थू का किशनपुर से।
0: जी जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।
0: इस फिल्म
1: गीत
0: का
1: के
0: कौन?
1: बोल है, ओ नन्ने से फरिश्ते
0: ओ
1: तुझसे
0: नन्हे से
1: ये कैसा
0: फरिश्ते।
1: नाता।
0: जी बहुत अच्छा गीत है।
1: जी दीदी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये जो जगह आप बता रहे हैं कहाँ आती है?
1: ये दीदी बिहार में पड़ता है, दरभंगा जिला। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ,
0: अच्छा, तो इस
1: अभी
0: समय
1: दिल्ली से
0: आपका
1: बात हो रही है।
0: अभी
1: जी
0: दिल्ली से बात हो रही है। आप दिल्ली में काम करते
1: जी
0: हैं?
1: दीदी, जी दीदी, प्राइवेट नौकरी करते हैं।
0: अच्छा, और कितने सालों से
1: और
0: दिल्ली में हैं?
1: काफी दिनों से दीदी पूरे परिवार में के साथ रहते हैं।
0: जी, लेकिन आप अपने खतों में अपने गांव के नाम का जिक्र करते हैं।
1: जी, जत्थुका किशनपुर।
0: जी, वहां की याद आती
1: हाँ
0: है।
1: जी दीदी, याद नहीं आई, अपना वतन है दीदी।
0: जी, बहुत सही बात है, और अपना
1: जी
0: वतन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो
1: दीदी,
0: आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: आपका भी धन्यवाद दीदी, शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ नमस्कार मैडम, मैं महेश रायगढ़ दुबई के बगीचे से। फिल्म
0: जी बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: समझौता गमों का गाना सुना दीजिए।
0: गाने की बोल
1: समझौता गमों से कर लो। धन्यवाद
0: जी। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: आपको।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी गोविंद जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये मन मौजी का है, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, लता मंगेशकर की आवाज।
0: जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। समय बहुत कम है, सुनिए रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। हम अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें फोन लगाए। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: अभी आप एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया हमारे नए श्रोताओं को जरूर मौका दें और आप अगले हफ्ते हमारे फोन इन कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और जो हमारे नए श्रोता हैं हम उनको अपना फोन नंबर बता देते हैं। हमारा फोन नंबर है 2660902 और 2660901 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सबसे पहले हमारे कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं, चलिए हम बात करते हैं।
2: हेलो
1: जी। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
2: मैं जबलपुर से बोल रही हूँ, वंदना उपाध्याय।
1: वंदना जी आपका स्वागत है। और सुनाइए कि नमस्ते, आपके आसपास का मौसम कैसा है ये बताइए।
2: मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है सर, यहाँ जबलपुर बरेला में बहुत कंटिन्यू चालू बारिश है।
1: अरे वाह, तो बरसात का आप फुल मजा ले रहे हैं।
2: मौसम ऐसा हो गया जैसे दार्जिलिंग में आ गए हो मेरे।
1: अरे वाह वाह, क्या बात है,
2: इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है।
1: अरे वाह, क्या कहना है, क्या कहना। तो बरसात का फुल मजा ले रही है।
2: जी जी जी। और आप क्या, भोपाल में कैसा माहौल है?
1: बहुत अच्छा है, पानी है, यहाँ भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है।
2: चलिए बढ़िया है, मस्त बारिश का ही मौसम है, मजा आ रहा है।
1: अरे
2: कोशिश की तो मैंने लगाती हूँ।
1: नहीं बहुत अच्छा किया। और देखिए क्या होता है कि खास हम इसलिए कहते हैं कि अपने श्रोताओं से कि हफ्ते भर के बाद में लगाइए ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले।
2: सुनती रहती हूँ मैं, कंटिन्यू सुनती रहती हूँ।
1: चलिए अच्छा बताइए कि
2: प्रस्तुति बहुत अच्छा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: मैं गाना सुनूंगी तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो,
1: सावन को आने दो,
2: सावन

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, मैं राम मालवी बोल रहा था कोलार रोड भोपाल से।
0: राम मालवी जी, क्या हाल चाल है?
1: बस एकदम बढ़िया हूँ सर, ऊपर वाले की मेहरबानी है आप पे हम पे हर मतलब सभी श्रोताओं पे और परिवार वाले भी सब बढ़िया है आनंद मंगल में। आप सुनाओ सर, आप कैसे हो सर?
0: बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखिएगा कि मौसम बदल रहा है।
1: जी जी जी,
0: है ना, मौसम का मजा ले रहे हैं सारे लोग, आप भी मौसम का मजा ले रहे हैं।
1: बिल्कुल बराबर बराबर सर,
0: है ना, ये कुदरत का बड़ा
1: अपना ये भारत है, भारत एक खूबसूरत अपना देश है, इसका जो मौसम है मौसम के मजे तो सभी लेते हैं, उसके साथ में मैं भी हूँ सर आप साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, मौसम के मजे लेने के सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मौसम के साथ में रहें और कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम भीग रहे हैं तो हमें कितना भीगना है हमें यह भी मालूम होना चाहिए, और मौसम के हिसाब से खान पान हमारा वैसा ही होना चाहिए, है ना?
1: जी सर बिल्कुल सर।
0: ये तो हो गई बातें, अब आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: जी सर, फिल्म दीवाना का सुनना चाहूंगा सर, उसमें गाना है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ये वाला सर।
0: अच्छा, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं।
1: जी,
0: अरे
1: जी,
0: वाह
1: जी,
0: क्या
1: जी,
0: बात
1: सर।
0: है।
1: और ये गाना मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद आएगा सर, और जितने भी सुनने वाले हमारे मध्य प्रदेश आकाशवाणी को सभी दोस्तों को ये गाना बहुत पसंद आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इस गाने को आपको सुनवाते हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: सर जी? नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदास।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल शानदार, सदाबहार।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सुनाइए, बासुदा के क्या हाल है?
1: बासुदा में फिलहाल बरसात हो रही है सर, पानी गिर रहा है।
0: हाँ हाँ
1: और भोपाल में गिर रहा है अभी।
0: हाँ बिल्कुल गिर रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि गंज बासुदा जो है मंडी के लिए बड़ा मशहूर है।
1: हाँ मंडी बहुत बड़ी है, कंजना के पठार पर है, बहुत बड़ी मंडी है।
0: मेरा ख्याल विदिशा जिले में सबसे बड़ी मंडी वही है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात
0: है ना, गंज बासुदा की, ऐसा सुना है मैंने। अब वो कितना सही है कितना गलत वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि गंज
1: बिल्कुल
0: बासुदा
1: सर,
0: की मंडी बहुत बड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो कौन कौन से अनाज आते हैं वहां पर?
1: वहाँ पर तो सभी आते हैं अनाज बेचने के लिए सर।
0: अच्छा
1: हाँ वो तो सभी क्षेत्र के गांव के लोग आते हैं अनाज बेचने,
0: हाँ हाँ तो
1: जैसे अपने भाई होगा, मंडी बामोरा होगा, कोलार होगा, बरेट हुई, ये सभी लोग आते हैं वहाँ गांव क्षेत्र के अपना गेहूं की उपज लेकर बेचने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप भी
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल
0: किसान हैं?
1: नहीं, हाँ किसान है ना सर, हम किसान भी है, पानीपुरी सेंटर का सिलाई भी लगाते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: बिल्कुल सर, आइए गंज वासुदा में, आपका स्वागत है हार्दिक
0: अरे
1: स्वागत
0: धन्यवाद,
1: करते हैं,
0: बहुत अच्छी
1: आइए।
0: बात कही आपने। जब भी आएंगे तो आप बिल्कुल, आपसे मुलाकात भी होगी। तो अच्छा ये
1: बिल्कुल
0: बताइए
1: सर,
0: कि,
1: पानीपुरी सेंटर पर जरूर आए आप।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना सुनना है तुम बिन का है।

0: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
0: जी विनोद कुमार, रॉकस्टार अजनर महोबा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर।
1: विनोद कुमार जी, क्या हाल चाल है?
0: जी जी
1: हाल चाल क्या है आपके?
0: बस बढ़िया है सर, बारिश का मजा ले रहे हैं।
1: हाँ हाँ, वेरी गुड।
0: आप कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ।
0: जावेद खान साहब नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार। तो देखिए कि मौसम की बात अभी हम कर रहे हैं और ये कल आप जब प्रोग्राम सुनेंगे तो मौसम फिर बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है।
0: नहीं, अभी तो मौसम फिलहाल रुकने का नाम ही नहीं।

0: सर आज गाना सुनवा दीजिए आप, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दिला के उसके, ऐसा कुछ गाना है।
1: हाँ हाँ पानी रे पानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, आप सुनिएगा अपने दोस्तों के साथ में।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर जी, नमस्कार सर जी। सर
0: नमस्कार।
1: जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाना खेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से सर।
0: क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, क्या हाल है?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और आकाशवाणी और रेडियो के साथ में मतलब रहते हैं। मतलब हमारा तो रेडियो एक दीवानापन है, और रेडियो हमारा एक साथी है सर, समझ लो एक परिवार का हिस्सा है सर।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, रेडियो से जो लोग जुड़े होते हैं उनको फिर दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसकी वजह
1: हाँ जी
0: यह है
1: सर
0: कि
1: जी,
0: रेडियो जब हम सुनते हैं तो आसपास के सारे काम जो भी हम कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं।
1: हाँ जी
0: जबकि
1: जी
0: हम अगर सोशल मीडिया या टीवी देखते हैं तो उसके साथ में एक ड्रॉबैक ये है कि सब काम छोड़ के हमें सिर्फ वही काम करना पड़ता है, सिर्फ
1: जी
0: देखने
1: जी
0: का
1: जी
0: काम।
1: बिल्कुल
0: तो ये हमारे साथ में ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि रेडियो के साथ में कि आप सारे काम करते रहिएगा और रेडियो सुनते रहिएगा।
1: बिल्कुल सर जी, हम तो पुराने दौर से रेडियो सुनते आ रहे हैं, करीब 40 सालों से रेडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी का दौर था जब पुराना वाल वाले रेडियो सेट हुआ करते थे घर में बड़े, जब
0: हाँ
1: से जुड़े हुए हैं। पिताजी तो अब नहीं रहे, पर पिताजी तो का जो शौक है रेडियो सुनने का, वो धीरे धीरे बचपन से हमें भी चालू हो गया, और जब से
0: हाँ
1: हम भी रेडियो से जुड़े हुए हैं 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिर प्रसार भारती का ऐप आ गया, तो ऐप के माध्यम से और भी रेडियो श्रोता बहुत दूर दूर के भी अब जुड़ने लग गए हैं, जो ऐप पर अच्छी साफ क्वालिटी में सुनाई देता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपकी आवाज से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा कि आप 40 साल से रेडियो सुन रहे हैं।
1: हाँ जी सर जी, मेरी अभी उम्र रनिंग 52 चल रही है।
0: अरे वाह,
1: पर
0: क्या बात
1: कहते हैं
0: है।
1: ना कि आप जैसे जो महोदय रहते हैं, उद्घोषक महोदय, उनके जो बात करने का अंदाज रहता है, बात करने का जो लहजा रहता है,
0: जी
1: उस प्रकार से हम भी थोड़ा थोड़ा सा हमारी आवाज में परिवर्तन हो जाता है। उम्र भले इतनी हो गई, पर आवाज आज भी गुनगुना लेते हैं थोड़ा बहुत
0: अरे वाह,
1: रेडियो के
0: क्या बात है,
1: माध्यम
0: क्या
1: से।
0: बात है। तो आज कौन सा गाना गुनगुनाने का दिल चाह रहा है?
1: ये सर जी, 20 अगस्त को जैसे भारत भर के जितने भी जो रेडियो श्रोता मित्र हैं, 20 अगस्त के दिन रेडियो श्रोता दिवस भी मनाते हैं। ये एक सभी रेडियो दोस्तों की दीवानापन दीवानगी है जो रेडियो के प्रति है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। इसी के माध्यम से हम जब थोड़ा सा गुनगुनाना भी सीखे हैं, तो वो एक गाना है, बहुत पुराना फिल्म का है, जिसकी फिल्म का नाम है खामोशी। उसमें
0: खामोशी।
1: एक गाना है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, ऐसा गीत है। तो ये गाना भी रेडियो आकाशवाणी में फिल्मांकन किया गया है इसका।
0: हाँ। अच्छा जी, खामोशी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी जी सर जी,
0: तो सुनिए अपने रेडियो सेट पर खामोशी फिल्म का ये बेहतरीन गाना।

0: जी नमस्कार भैया,
1: नमस्कार।
0: मैं दादू भाई कपूरवा ग्राम तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से भैया रोशन सिंह बात कर रहा हूँ।
1: रोशन सिंह जी, क्या हाल चाल हैं?
0: मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा।
1: मैं बात कर रहा हूँ जावेद खान।
0: जी भैया जी, बढ़िया है, बस आपको ट्राई कर रहे थे तो कॉल लग गई।
1: अरे वाह वाह, देखिए जब दिल से कोई किसी को याद करता है तो अपने आप तार जुड़ जाते हैं।
0: जी भैया,
1: हाँ, तो अब ये बताइए कि जब दिल से तार जुड़ गए हैं तो दिल की बात अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो गाना बता दीजिए।
0: भैया जी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है आपके
1: अरे जरा
0: कार्यक्रमों की।
1: नवाजी, देखिए आप लोगों से ही तो हम लोग हैं, अगर आप
0: जी
1: सुनने
0: जी
1: वाले हैं तो तभी तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बनाए। अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम रहेगा यकीन।
1: यकीन। हाँ
0: जी, इसमें एक गीत है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यार आए तुझ पे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और हमारे अगले कॉलर कौन है, उनका फोन आ रहा है। हेलो
1: जी सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं श्री चंद्र निषाद, ग्राम जलालपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, उत्तर प्रदेश से आप हमारे दूसरे कॉलर हैं। अब ये बताइए कि आप दिल की बातें हमसे करेंगे या दिल का गाना सुनना चाहेंगे, दोनों में से क्या करना चाहेंगे पहले?
1: दिल का गाना सुनेंगे जी।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन।
0: अच्छा हाँ, करण अर्जुन
1: जी सर।
0: तो आप अपने रेडियो सेट पर जरूर सुनिएगा आपका ये प्यारा गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और जो श्रोता हमारे 15 दिन से पहले हमसे कनेक्ट हुए हैं तो उनसे निवेदन है कि कृपया नए लोगों को मौका दीजिएगा। आपके पसंदीदा गाना आप सुन सकते हैं हमारे प्रोग्राम में फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और अब हमारे अगले श्रोता कौन है हम उनसे बात करते हैं। फोन करेंगी सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं
1: जी? धन्यवाद, मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: अरविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: श्रीनगर जिला महोबा से।
0: महोबा से, क्या बात है क्या बात है। और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल शानदार। अच्छा ये बताइए कि महोबा में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा मशहूर है?
1: जी यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ के बड़े लड़ैया महोबे वाले आला उदल है। मेरा गांव है श्रीनगर, यहाँ मूर्ति पूरे देश में जाती है यहाँ से अष्ट धातु की।
0: अरे वाह क्या बात है। तो अब ये बताइए कि आपके मन का गीत कौन सा है जो हम आपको फोन करेगी सुने में सुनवा दें?
1: जी अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसी के उपलक्ष में सुन लेंगे चंबल की कसम फिल्म का।
0: चंबल की कसम का कौन सा?
1: चंदा रे मेरे भैया से कहना।
0: हाँ गाना तो बहुत ही शानदार है
1: जी, मेरे आंसू आ जाते हैं इस गाने, बहुत फीलिंग जुड़ी है। मेरी बहन नहीं है कोई, भाई बहन नहीं है मेरा कोई भी।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं भाईजान फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव।
0: अरे वाह, क्या क्या कहना। जैसा कि आपका नाम है ना फूलचंद, तो आपके फोन से हमें फूलों की खुशबू आ गई।
1: क्या भाई साहब, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: हाँ तो और बताइए क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है सर, हाल चाल बढ़िया है। आइए खजुराहो घूम जाइए आप।
0: हाँ बहुत सालों से नहीं आए, जब भी आएंगे तो बिल्कुल घूमने के लिए आएंगे और आपको याद भी करेंगे।
1: और मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो के मंदिरों में जो कलाकृतियां हैं वो देखने के लायक हैं। देखो आप तो कहेंगे कि हाँ यार क्या कला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारा जो आर्ट था, जो बरसों पुराना हमारा कल्चर था, वो हमें प्राचीन मूर्तियों में या इन चीज़ों में हमें दिखाई देता है कि हम कितने समृद्ध थे उस जमाने में। अच्छा देखिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और सारे लोग आपको सुन भी रहे हैं। अब ये बताइए, मन की बात बता दीजिए कि आप गाना

0: कौन सा सुनेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, देखिए सामने रक्षाबंधन का त्योहार है, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी एडवांस में शुभकामनाएं।
1: और ऐसे में ये गीत याद आ रहा है मुझे, फिल्म का नाम है अंधा कानून,
0: जी
1: और गीत की बोले कि मेरी बहना दीवानी है, ये वाला गीत बजाइए आप, जो है रक्षाबंधन के ऊपर गीत है।
0: हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाना है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं महोबा से, और मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी चित्रकोट धाम से हैं,
0: जी,
1: राजू यादव जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, और पूनम कानपुर से हैं। जितने श्रोता सुन रहे हैं, माताएं बहनें सुन रही हैं, सभी को डेडिकेट रहेगा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण पाठ के बजाय केवल दो पद गायन के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 से कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जनविश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग के जरिए प्रवेश दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। और हॉकी महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। भारत ने कल इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर आज हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप तक भेजती हूं मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों दोपहर का वक्त है, दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार के बीच कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब मन ठहरना चाहता है। किसी गीत की धुन पर, किसी भूली बिसरी याद के पास, किसी अपने की आवाज के एहसास में। और आज इन खूबसूरत पलों को आपके नाम करने के लिए हम हाजिर हैं, आपकी पसंद के गीतों के साथ, आपकी यादों के रंगों के साथ और आपके भेजे हुए खतों के साथ। क्योंकि फिल्मी गीत सिर्फ धुन और बोल नहीं होते हैं दोस्तों, कभी वो किसी मुलाकात की कहानी कहते हैं, कभी बिछड़ने का दर्द, तो कभी किसी रिश्ते की मिठास बन जाते हैं और कभी बीते हुए दिनों की खिड़की खोल देते हैं। आपके खत भी तो कुछ ऐसे ही है ना, कागज पर लिखे हुए शब्द जिनके पीछे धड़कता हुआ एक दिल होता है, किसी की फरमाइश, किसी की याद, किसी का संदेश और कभी कभी एक पूरा किस्सा भी होता है। तो आइए आज दोपहर 12 बजे गीतों की इस महफिल में आपके हम खत पढ़ते हैं, आपकी फरमाइशें सुनते हैं और उन फिल्मी नगमों से मुलाकात करते हैं जो शायद आपके दिल की बात हमसे बेहतर जानते हैं। आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश, जहां गीत हमारे हैं लेकिन हर गीत के पीछे

छिपी कहानी आपकी है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी पसंद का पहला गीत घर फिल्म से है, आवाजें किशोर कुमार लता मंगेशकर की, और इसे लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। अनुरोध आप सबका है, गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधेश्याम चावला इसी गीत को पसंद करते हैं। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, और साहूनगर यवतमाल से ये खत आया हुआ है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, स्वीटी, बेबी, प्रियांशी। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं घर फिल्म का ये गीत। वो मेरी तरफ तेरी उठती हुई नजरें जाने क्या कह के मुझे शर्म से फिर लौट गईं।

आपकी आंखों में कुछ, घर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। पसंद आप सबकी है। कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन और बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीडी मल्होत्रा, वृतिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। ये खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से। लिखने वाले श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा, जिला बुलडाणा, महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद करते हैं। नारायण भाऊ खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। मोहब्बत का तुमसे असर क्या कहूं, नजर मिल गई, दिल धड़कने लगा।

झुक गया आसमान, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत असद भोपाली का लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण, प्रज्वल और अनुत डेरे, और ये खत आया है राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट का। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत। मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम होती है, मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम होती है, ना सुबह होती है इसकी ना शाम होती है।

दिल की बातें दिल ही जाने, लेकिन भाई आपके दिल की बात तो हम ज़रूर जानते हैं क्योंकि वो बातें लिखी हुई हैं ख़त में। जी हाँ, आपकी फरमाइश। कुछ ख़त इस वक्त मेरे हाथ में हैं, आइए आपको बताऊं कि किन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत है। ये ख़त है छत्तीसगढ़ से आया हुआ, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू का, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, और ये चिट्ठी आई है अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा, आफिया खान, रऊफ भाई और शहीद भाई की ओर से। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत आरडी बर्मन का है और फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ हसीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है।

तुम बिन जाऊं कहां। किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला जो गीत है वो हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर और प्रिंस एकांश गवहाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर टुक टुक। और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर, कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। अगला खत आया हुआ है सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले। और छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। एक और चिट्ठी है

0: तो दोस्तों, दोपहर के इन खूबसूरत पलों में कभी कोई गीत आपके पास बैठा, किसी खत ने पुरानी यादों का दरवाज़ा खोला और कभी किसी धुन ने मन की अनकही सी बात कह दी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
8: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
10: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
9: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज सुनिए धारावाहिक जमुनिया की तीसरी कड़ी।

0: भैया।
1: पिछले अंकों में आपने सुना है जमुनिया और उसका पति पट्टे की जमीन पाकर खुश हैं। फिर भी ऊबड़ खाबड़ खरपतवार वाली जमीन में पत्थर हैं, जिसे दोनों मिलकर साफ करते हैं। उधर रतन का भाई करण दीवान से मिलकर अपने भाई रतन को 10,000 का कर्ज दिलाता है। दीवान रतन का खेत अपने ट्रैक्टर से मुफ्त में जुतवा देता है। रतन और जमुनिया प्रसन्न हैं। अब आगे।
2: चलो, ये अच्छा हुआ खेत की जुताई हो गई, नहीं तो हाथ से करते तो बड़ी मेहनत लगती।
3: हाँ, और टाइम भी तो बहुत लगता।
2: अरे, ये अचानक क्या सोचने लगे? हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ सोचने लगते हो।
3: पता नहीं क्यों ये सब अच्छा अच्छा हो रहा तो डर लगता है। अब बुरे की तो आदत हो गई। अच्छा जमुनिया, तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूं।
2: क्या?
3: वो उस दिन जब पट्टे की जमीन लेते हुए अंगूठा लगा रहा था।
2: हाँ?
3: तो पहली बार अंगूठा लगाते हुए अच्छा लगा। पर यही अंगूठा जब दीवान लगवा रहा था तो ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था।
2: चलो, कुछ तो अच्छा लगा ना, अब सो जाओ।
3: ठीक है। अरे हाँ, कल सवेरे जल्दी उठना भी तो है। अब खेत की जुताई तो हो गई, सिंचाई के लिए नाली बनाना है।
2: ठीक है, ठीक, अब सो जाओ।
3: अच्छा, तुम भी सो जाओ जमुनिया।
4: कोई है?
5: जी मालिक।
4: कहां मर जाते हैं सारे के सारे? इतने आदमी रखे हैं पर जब देखो कम बखत जाने कहां गायब हो जाते हैं।
5: आया मालिक, आया मालिक, गायों को पानी पिला रहा था।
4: गायों को पानी पिला लिया?
5: जी मालिक, पिला दिया।
4: अच्छा ये बताओ
5: मालिक,
4: ये तुम लोग कर क्या रहे हो?
5: मालिक हम
4: पट्टा बटे 15 दिन हो गए हैं, सब लोग खेतों में लगे हैं और कर्ज लेने कोई नहीं आया। ले देकर एक आदमी आया रतन, उसे भी लेकर आया था उसका भाई करण। अरे तुम लोगों से तो करण ही अच्छा है।
5: मालिक, कह तो रखा है कईयों से, अब फिर जाता हूं। अरे मालिक, ये क्या करण आ रहा है? देखिए, आओ करण, आओ। अभी मालिक तुम्हें ही याद कर रहे थे।
6: कैसे मालिक, कोई गलती हो गई?
4: अरे नहीं भाई, नहीं, गलती नहीं। मैं तो कह रहा था करण, कर्ज लेने कोई नहीं आया तेरे भाई को छोड़कर।
6: अरे आएंगे मालिक, आएंगे, जाएंगे कहाँ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ मालिक।
4: अच्छा, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो?
6: मालिक, मुझे कुछ कर्ज नहीं मिल सकता है।
4: कर्ज? और तुझे? तेरी हरकतें जिम्मेदार आदमी की तो है नहीं, इसलिए तुझे तो कर्ज मिलने से रहा। इसलिए बार बार पूछकर मेरा दिमाग खराब मत किया कर।
6: माफी मालिक, माफी। मैं तो ऐ कहना चाहता था कि रतन भैया को तो कर्जा 10,000 का दिया था, उसे ही 20,000 का लिख दीजिए। अभी तो कागज सादा ही होगा, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और कर्जा चुका देंगे।
4: अच्छा, कर्ज के कागज पर लिख दूं 20,000 और तुझे दे दूं 10,000, और पैसा लेकर तूने अपने भाई को बताया ही नहीं और ऐश करके उड़ा दिए तो?
6: ना मालिक, ऐसा नहीं होगा।
4: ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब दीवान को तो बनाओ मत, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। पर है एक उपाय है।
6: क्या मालिक, क्या उपाय है?
4: तेरा दिमाग बड़ा शातिर है बच्चे, तो सुन वो उपाय।
6: जी।
4: मैं तुझे 5,000 दूंगा, पर गवाह की जगह तुझे दस्तखत करने पड़ेंगे।
6: मुझे भी तो दस्तखत करना नहीं आता मालिक।
4: पर चतुर तो बहुत है तू। कर्ज के कागज कोरे हैं ये जरूर देख लिया तूने, बदमाश। अच्छा चल, अंगूठा लगा देना। अब कर्ज की रकम होगी 25,000। ऐसे मुंह बाय क्या देख रहा है? अगर चाहिए तो हां बोल, और जरूरत पड़ी तो तुझे गवाही भी देनी पड़ेगी कि करण ने तेरे सामने 25,000 रुपए उधार लिए थे।
6: मालिक 10 दीजिए ना, गवाही तो मैं दे ही दूंगा।
4: दीवान को उल्लू समय रखा है क्या? चलो उठ यहां से, 10 की रट लगा के बैठ गया। सर 5 चाहिए तो बोल।
6: ठीक है मालिक।
4: शाबाश, ये हुई ना अकलमंदी वाली बात। अरे सुनो।
0: जी मालिक।
4: ये रतन के कर्ज वाले कागज पर इसका भी अंगूठा ले लो।
0: हाँ, जी मालिक।
5: हाँ मालिक।
0: ए करण, इधर आ।
6: जी भैया।
4: और सुन, अंगूठा लगाकर मेरे पास वापस आ जाना।
6: जी।
4: चलत मुसाफिर मोली रे पिंजरे वाली मुनिया, ए चलत मुसाफिर मोली रे।
6: अंगूठा लगा दिया मालिक।
4: बड़ा अच्छा किया करण। अब घर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? सोनुआ के पिंजरे में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियरा उदास।
6: मालिक मजाक कर रहे हैं।
4: जब दीवान तुझसे मजाक करेंगे।
6: ठीक है मालिक।
4: क्या ठीक है? पैसे चाहिए तुझे।
6: जी।
4: पैसे लेकर जाएगा तू?
6: जी।
4: चल ले, तू भी क्या याद रखेगा बच्चू, ये ले पकड़।
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मालिक ये तो 1,000 है।
4: हाँ 1,000। देख भाई, पैसे तो तुझे किश्तों में ही मिलेंगे। हाँ एक बार में दे दिया तो उड़ा देगा, और फिर तेरी बात भी तो देखनी होगी कि बात बात में तूने नशे में राज जाहिर कर दिया, तो इसलिए अभी ये रख, फिर धीरे धीरे बाकी रकम ले लेना।
6: नहीं मालिक, ये राज तो मैं जाहिर करने वाला नहीं, चाहे सभी रुपया अभी दे दो या किस्तों में। चलता हूँ मालिक।
4: शाबाश, चल चल इधर आ, इधर आ।
6: जी।
4: ये ले 50 और रख, और ये हिसाब किताब में नहीं है। बच्चों को मिठाई खिला देना।
6: जी मालिक।
4: चलत मुसाफिर मोली अरे पिंजरे वाली मुनिया।

0: ये ससुर माटी है कि पाथर, नाली कैसे बनेगी, अरे खेत कैसे सिंचाएगा। हे भगवान, आज रात झमाझम पानी बरसा दो भगवान, अरे रतन की भी कुछ सुन लो मालिक।
1: सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। वो तुम्हारे खेत पर बादल लेकर आएंगे, है ना, और पलेवा लगाकर चले जाएंगे।
0: अरे ले भाई आ गया। अच्छा एक बात तो बता, मैं यहां खेत में काम करता हूं और तू वहां घर में काम करती है, पर जमुनिया तुझे पता कैसे चलता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए।
1: हम औरत हैं, आपन आदमी की जरूरत समझ जाती हैं। समझ गए?
0: हाँ पर बताओ, अब भगवान से भी ना मांगे तो कहाँ जाएं?
1: अरे भाई, मांगो और भगवान से ही मांगो, पर सबके लिए मांगो। खाली आपन दुखड़ा रोने से भगवान थोड़ी ही सुनने वाले।
0: चल भाई तू ही मांग, सबके लिए मांग।
1: ये अच्छी कही। और ये टंटनाती धूप देख रहे हो? ऐसे में तो एक बूंद की भी आस नहीं। तुम झमाझम पानी बरसने की बात कर रहे हो?
0: अरे आसवास छोड़ो, भगवान है तो ऐसे में ही बरस कर दिखा देंगे।
1: हाँ, इनकी सुन लेना भगवान। अभी तो पानी पियो और नाली बनाने में लगो। कहो तो मैं भी लग जाती हूं।
0: अरे तू तो रहने दे, अब तू घर जा, घर का काम देख, जरूरी हुआ तो मैं तुझे बुला लूंगा।
1: अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ।

0: आज अंग्रेजी तो ला, देसी तो रोज ही पीते हैं।
1: वो बाबूजी को लगा, बाबूजी को लगा।
0: क्या बात है करण भैया, कहीं माल वाल हाथ लग गया क्या?
2: अरे काय का माल वाल, उधार मांग के लिए बहुत दिन से मन कर रहा था। ये उधार ससुर हमारे ऊपर ही चढ़ा बैठा है, चाय पीकर उधार करें या फिर उधार लेकर पिए।
0: देख भाई करण, तेरा पुराना उधार तो मिल गया।
2: ठीक है,
0: ये दीवान तेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है, क्या बात है? तेरी सारी उधारी चुका दी उसने।
2: अरे ठीक है चल ला, आज इसी खुशी में अंग्रेजी तो ला जरा।
0: लाते हैं, थोड़ा सा धीरज रख भाई, इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है?
2: अरे सुनो, कुछ चना चबेना भी।
0: ए करण, लगता है बारिश होगी, अंदर आजा भाई।
2: अरे आता हूँ। ये पिन बादल साथ किसी।
0: अरे यही तो ऊपर वाले की ताकत है भैया करण।
2: मान गए।
3: अरे कितनी जोर से गरज रहे हैं ये बादल। इन बादलों को भी अभी बरसना था, अभी चारों ओर लोग नालियां बना रहे थे। अरे हमारा ट्यूबवेल चलता, कुछ कमाई होती। पहली सिंचाई तो ऊपर वाले ने ही कर दी। वाह भगवान वाह, आप भी कभी कभी भांजी मारे ही देते हो।
4: देखा जमुनिया, तुम्हारी कथनी भगवान मान गए, बिना बादल ही बरस गए।
5: हाँ, सबके भले में ही आपन भला। अब नाली बनाने के लिए पत्थर नहीं तोड़ना पड़ेगा, है ना?
4: हाँ, अरे अगर थोड़ा और बरस गए तो कल रोपनी होगी, धान की रोपनी।
5: जब इतना बरसे हैं तो फिर बरसेंगे ही, मेरा मन कहता है।
4: लो भाई चलो, तैयारी करो, आज ही धान रोपेंगे।
5: चलो जी, आज ही रोपते हैं धान।
4: हाँ।
6: ऐसा वाला।

0: गरिया।
1: अरे जमुनिया, अरे वो वाली कजरी सुनाओ ना।
2: कौन सी जी?
1: अरे वो क्या तो है, हाँ, अपने गायल रंगून कचौड़ी गली सुन कायल बलम।
2: राई दे, याद नहीं है। और फिर जब आप रंगून जाएंगे तभी ना कचौड़ी गली सुन होगी, अभी तो सब कुछ आबाद है।
3: कमबख्तों, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो तुम लोग। अरे देख नहीं रहे, आधे पट्टेदारों के धान रोपे जा चुके हैं।
4: मालिक।
3: अरे मालिक क्या कर रहे हो, कर्ज लेने आए कुल 5 और तुम लोग, अरे तुम लोग आखिर कब तक बैठे रोटियां तोड़ोगे?
4: सभी सभी आएंगे देर सवेर मालिक।
1: अभी एक बोछार क्या आई है कि सब चहक रहे हैं।
3: अरे यही तो, ये चहक नहीं रहे हैं, अरे चहक नहीं रहे हैं, हमको जला रहे हैं, कमबख्त जला रहे हैं हमको।
5: अरे किसकी हिम्मत है जो आपको जलावेगा मालिक?
3: अरे उस जमुनिया जला रही थी और कौन। अरे सुना आज बड़ी कजरी वजरी गाई गई है। अरे उस जमुनिया बड़ा चहक चहक के गाना गा रही थी। अरे अरे जाके कह देना उससे, हाँ अरे कल हमारे खेत में भी धान रोपा जाएगा और सब लोगों को लेकर आना। हाँ
5: सबको ले आएंगे मालिक, आपने कहा वो बस काम हो गया समझिए। मालिक थोड़े पैसे चाहिए थे।
3: पैसे? कैसे पैसे?
5: वो जो बाकी हैं 4,000 रुपए।
3: बाकी 4,000? कमबख्त, हमको कर्जा दिए हो का है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मांगने की?
5: माफी सरकार, हमारी मतलब नहीं था, आप ही बोले थे किस्तों में देंगे।
3: तो वो किस्त हमारी मर्जी से होगी, समझे? जब हम चाहेंगे तब तुम हमसे मांग नहीं सकत।
5: जी
3: हाँ। ये कोई सपेरा लग रहा है। ए, ए, इधर आओ, क्या कर रहे हो इधर तुम?
6: हुजूर, साहब ना चाहते हैं हजूर, कुछ मिल जाए तो हम दोनों खा लेंगे।
3: नाग पंचमी को तो बहुत दिन है अभी भैया, अब इसे लगे घूमने तुम।
6: हुजूर हम तो साल भर यही धंधा करते हैं।
3: ठीक है ठीक है। बड़ा सुंदर सांप है ये तो, पर अंदर रखो इसे अभी।
6: जी।
3: अरे कोई है?
4: जी मालिक।
3: इसे लाकर कुछ अनाज दे दो।
4: आया मालिक।
3: जाओ जाओ।
2: सुनो जी।
7: हाँ।
2: आज बहुत अच्छा लग रहा है।
7: वो क्यों है, कोई खास बात है क्या? आज
2: आज पहली बार आपन खेत में आपन धान रोपे हैं।
7: हाँ।
2: पहली बार। अच्छा तो तुम्हें भी लग रहा होगा ना?
7: बहुत अच्छा लग रहा है आज तो।
5: हाँ हाँ तुम लोगों को तो अच्छा लगेगा ही, मालिक मालकिन जो हो गए हो खेत के, इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है।
7: करण क्या बक रहा है? अरे हम कमा कमा कर हाड़ तोड़ते हैं तब तुम्हारे मुंह में निवाला जाता है।
5: बस यही, तुम कमा रहे हो और मैं खा रहा हूं, किसी काम धाम का तो हूं नहीं, तो भैया हमें अलग क्यों नहीं कर देते हो?
7: क्या अंट शंट बोल रहा है आज तू?
5: अरे सारी दुनिया में मेरी थू थू हो रही है, अब मैं भी कमाऊंगा तब ही खाऊंगा।
7: अरे ये अलग होने की क्या बात है, हमारे पास क्या है जो बांटेगा? अरे हमारे साथ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो रहो अलग, कौन रोकता है?
5: तो फिर आधा खेत मेरा होगा, उसमें जो पैदा होगा उसका आधा, बस अगली फसल से मैं अलग जोतूंगा बोऊंगा।
7: लगता है तुम्हें कोई बहका रहा है, नहीं तो पी कर भी तू कभी ऐसी बात नहीं करता था।
5: अरे हमें कोई नहीं बहका सकता।

0: इतना तो हम भी समझते हैं। अरे मीठी छुरी हो तुम, मीठी छुरी।
1: देख रहे हो इसकी जुबान, हमारा सुख इसे देखा नहीं जा रहा है।
0: अरे तुम तो चुप ही रहो, दीवान से 10,000 दिलवाया तब तो बड़ा अच्छा लगा, ये नहीं कि 1,500 मेरे हाथ में धर देते। मेरे भी कुछ अरमान है, पूरा कर लेता मैं भी।
2: हाँ तो तुम्हारे पेट में वो पैसे ऐंठ रहे हैं। हाँ अरे समझता क्यों नहीं कि वो कर्ज है, कर्ज। तू तो पूरा ही ले ले, बस लौटाने की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है?
0: अरे चलो ठीक है, मैं लौटा दूंगा।
1: ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दूंगी।
0: वो तो सही है, अरे मैं सब समझता हूँ, तुम नहीं होने दोगी। हाँ
2: जमुनिया तुम हम भाइयों के बीच में मत पड़ो।
1: क्यों ना पड़ू, दीवान ने अंगूठा तुम्हारा लिया है, पैसे वो तुमसे वसूल करेगा, इन्हें तो बस उड़ाना आता है।
0: अरे रहने दो भैया, रहने दो, बस आधा हिस्सा हमें दे दो, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। अरे तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे हम। हाँ
2: देख भैया करण, बहुत रात हो गई है, कुछ खा पी कर सो जाओ, जो बात है वो कल करेंगे, ठीक है?
0: अरे बात तो यही रहेगी, चाहे आज हो या कल, छोड़ूंगा नहीं भैया तुम्हें।
1: ठीक है देवर जी,

जैसे बड़ी है जमुनिया जी आगे, जैसे बड़ी है जमुनिया जी आगे, वही राह तुम भी ए भैया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दौरान पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण पाठ के बजाय केवल 2 लोक गायन के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने दावा किया है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां उद्योग संवाद, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिटरिंग के प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दी है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया गया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर आज से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच चलेगी। और हॉकी महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। भारत ने इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 648 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं। अब समय हो रहा है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

हौसलों के पंख तैरते हैं खुली उड़ान में, आज की नारी कम नहीं किसी आसमान में। समेटे है खुद में हर रंग कायनात का, वजूद गूंज रहा उसका पूरे जहान में। सखियों, इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के महिला सभा कार्यक्रम का। आज आपके साथ हूँ मैं, शालिनी सोनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज बात हम करेंगे उन भारतीय महिलाओं की जिन्होंने खेल के मैदान में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया और लाखों बेटियों को बड़े बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। एक समय था सखियों जब खेलों को महिलाओं के लिए कठिन माना जाता था, लेकिन आज भारतीय नारी क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, एथलेटिक्स जैसे अनेक खेलों में अपनी पहचान बना रही है और भारत का नाम ऊंचा उठा रही है। सखियों, वैसे तो हर वर्ष महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने निरंतर बढ़ती चली गई, लेकिन सखियों इन सफलताओं के पीछे प्रतिभा नहीं, बल्कि प्रतिभा तो थी ही, साथ ही कई वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास भी छुपा था। महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया सखियों कि अवसर और उचित प्रशिक्षण मिले तो वे विश्व के सबसे ऊंचे मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। सखियों, इसी दिशा में महिलाओं को की जो खेलों में भागीदारी है ना, उसे बढ़ाने के लिए 2026 में देश भर के लगभग 250 स्थानों पर एथलेटिक्स लीग का आयोजन भी किया गया और इसका उद्देश्य महिलाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था। वाकई सखियों, भारतीय महिला खिलाड़ियों में पीवी सिंधु, मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, कर्णम मल्लेश्वरी और मिताली राज और भी कई ऐसी महान महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम आज भी हम बड़े गर्व के साथ लेते हैं, जिन्होंने मैदान में उतरकर दुनिया को बता दिया कि मौका मिले तो हम इतिहास रच सकती हैं। ये खिलाड़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी जिन्होंने समाज की बंदिशों, संसाधनों की कमी और कठिन परिस्थितियों को अपने सपनों के आगे नहीं आने दिया। अवसर मिला और रास्ता स्वयं बनाया और पा ली अपनी मंजिल। सखियों, यकीनन जब बेटियां खेलती हैं ना तो केवल पदक नहीं लाती, वे जीतती हैं एक भरोसा और बदलती हैं अपनी किस्मत, साथ ही साथ समाज की सोच भी।

सखियो, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है मिशन वात्सल्य योजना। इसका उद्देश्य हर बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन देना है। मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है सखियो। इसका विशेष ध्यान सखियो उन बच्चों पर है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। सखियो, इसके अंतर्गत बच्चों के लिए संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बच्चों को आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श और कौशल विकास जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाता है और कोशिश यही की जाती है सखियो कि बच्चे सुरक्षित वातावरण में परिवार और समाज के साथ जुड़कर आगे बढ़ें। और ये मिशन जो है ना सखियो, बच्चों के जीवन, विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकार को भी बताता है।

0: इसका लक्ष्य परिवार और समुदाय को भी बाल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है, ताकि बच्चों को पोषण अपेक्षा और जो उनका शोषण होता है, उनकी असुरक्षा है, उससे बचाया जा सके। सखियों याद रखिए कि हर बच्चा देश का भविष्य है। इसकी सुरक्षा केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। तो हमें भी ये वादा करना होगा ना सखियों कि हर बच्चे को हम सुरक्षित रखेंगे, सम्मान दिलाएंगे और उन्हें शिक्षा दिलाएंगे, ताकि उनके सपनों को भी पंख मिल सके। चलिए सखियो, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और सखियो, आप क्या जानती हैं कि हम महिलाओं को मनी मैनेजर कहा जाता है? जी हाँ, मनी मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि हम परिवार के बजट को संभालती हैं, है ना? खर्च की योजना बनाती हैं, जो खर्चे हैं उन्हें संभालती हैं, छोटी छोटी छोटी जो बचत हैं उन्हें भी कर लेती हैं, कुल मिलाकर आमदनी और खर्च के बीच तालमेल बैठा लेती हैं बड़ी सलीके से, है ना सखियो? और खर्चों का हिसाब भी रखती हैं और बचत भी कर लेती हैं। लेकिन सखियो, अगर थोड़ी सी जानकारी हमें वित्तीय मैनेजमेंट की मिल जाए ना, तो छोटी छोटी जो बचत है वो एक बड़े फायदे में बदल सकती है। जानती हैं कैसे? चलिए आपको बताते हैं आज भेंट वार्ता के माध्यम से। भेंट वार्ता का विषय है महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता और निवेश। विशेषज्ञ हैं ईश्वर लाल खत्री जी और इनसे बातचीत कर रही हैं शिखा साहू। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: कहते हैं सखियों, कमाई से ज्यादा जरूरी है कमाई को सही दिशा देना। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे घर भी संभाल रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कमाई तो होती है, पर बचत और निवेश की सही जानकारी न होने के कारण भविष्य की आर्थिक सुरक्षा कमजोर रह जाती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वित्तीय विशेषज्ञ ईश्वर खत्री जी। तो खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार मैम।
1: सर, आज की बातचीत के विषय के अनुसार हम महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और निवेश के विभिन्न उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि वित्तीय साक्षरता, इस शब्द का क्या महत्व है और एक महिला के लिए वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानना और समझना क्यों जरूरी है? सर
2: जी, वित्तीय साक्षरता से तात्पर्य उस ज्ञान कौशल एवं दृष्टिकोण से जो किसी भी व्यक्ति को अपने वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध करने में सक्षम बनाता है। इसमें महिलाओं के लिए खास करके बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना, बीमा कराना और कर संबंधी जानकारी प्रायः शामिल रहती है। अब जब महिलाएं इन पहलुओं को समझती हैं और अपने जीवन में लागू करती हैं, तो न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति सुधरती है बल्कि उनके परिवार और समुदाय की समग्र आर्थिक प्रगति भी होती है। बचत व्यवहार किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होता है
1: जी।
2: और जब परिवार की महिलाएं नियमित रूप से बचत करती हैं, तो घरेलू आर्थिक सुरक्षा बहुत मजबूत होती है। खासकर महिलाओं में बचत करने की प्रायः एक, जिसे कहते हैं, अनुवांशिक टेंडेंसी होती है। महिलाएं अपने भविष्य को देखकर, बच्चों के भविष्य को देखकर प्रायः बचत करना उनके स्वभाव में रहता है।
1: जी सर, इसीलिए तो कहते हैं कि महिलाओं में वित्तीय समझदारी और वित्तीय साक्षरता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर, महिलाओं की अगर बात करें ना, तो वो पूरे घर का बजट व्यवस्थित रूप से बनाने के बाद, सबकी जरूरतें पूरी करने के बाद भी कुछ बचत बचा ही लेती है। तो अगर महिला निवेश करना चाहती है, तो क्या वो अपनी इन छोटी छोटी बचत से भी निवेश कर सकती है?
2: जी, बूंद बूंद से गड़ा भरता है। और महिलाएं तो पुराने समय में 10 पैसे से भी बचत चालू कर देती थी, आज के समय में 10 रुपया, 100 रुपया किसी भी रूप से बचत शुरू की जा सकती। और सरकार की ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं, बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाएं हैं, और भी ऐसे कई पारंपरिक निवेश को छोड़कर कुछ ऐसी निवेश पद्धतियां भी हैं जो कि गैर पारंपरिक हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश और पीएस में निवेश। इनमें न्यूनतम राशि जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो उनकी योजनाओं में निर्धारित है, उससे भी निवेश प्रतिदिन, प्रति माह के हिसाब से, प्रतिवर्ष के हिसाब से कम किया जा सकता है। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। तो निवेश करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, बचत करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक इतना ही अमाउंट आपको निवेश करना है, इतनी राशि निवेश करना है। आप न्यूनतम से न्यूनतम राशि से निवेश करना चालू कर सकते हैं। हैं उसमें।
1: जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि निवेश के कई सारे विकल्प हैं, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, बीमा योजनाएं हैं, तो कुछ आसान और सरल योजनाएं हमारी सखियों को बता दीजिए।
2: जी जी, आज के समय में ये मोबाइल क्रांति और डिजिटल इन्वेस्टमेंट का युग है, तो सबसे जो पारंपरिक निवेश जो महिलाओं के लिए है, वो सबसे अच्छा निवेश जो है पोस्ट ऑफिस नियर, जो कि ग्राम आसपास में शहरी क्षेत्रों में बहुत नज़दीक का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। पोस्ट ऑफिस ऐसा संस्थान है जहां पर आप न्यूनतम से न्यूनतम राशि में अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे मात्र 500 रुपये में आप आपका बचत खाता खोल सकते हैं, उसमें 4% की दर से वार्षिक आपको ब्याज मिलता है। जब भी पैसा आप निकालना जमा करना चाहें, अपनी सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं, निकालना चाहें निकाल सकते हैं। उसके अलावा 100 रुपये से आप मासिक, जिसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें 6.7% पर एनम के हिसाब से ब्याज दर है उसमें। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें कि अपनी बचत का पैसा निवेश कर सकते हैं। भारतीय सरकार की एक और योजना है जो महिला सम्मान निधि करके योजना है, इसमें आप 1,000 रुपये से लेकर 2,00,000 तक का निवेश कर सकते हैं, जो महिलाओं के लिए मतलब विशिष्ट रूप से ये योजना बनाई गई है, जिसमें 2 साल तक आप पैसा जमा करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन पारंपरिक इन्वेस्टमेंट्स के अलावा अगर महिलाएं अपनी जोखिम जो सीमा वो अगर जानती हैं, और अगर पारंपरिक इन्वेस्टमेंट जैसे FDs का, सावधि जमा का जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें ब्याज दरें एक सीमित मात्रा में मिलती हैं, उससे ज़्यादा अगर उनको रिटर्न चाहिए और अगर जोखिम ले सकती हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरह मतलब गैर पारंपरिक रूप से उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क का फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा रहता है।
1: जी सर, अक्सर कहा जाता है कि एक महिला सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती, वो आने वाले कल को भी ध्यान में रखकर फैसले लेती है। दूरदृष्टि एक महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की खुशहाली और भविष्य की सुरक्षा को हमेशा अपनी प्राथमिकताओं में स्थान देती है। इसी सोच के साथ सर, थोड़ी थोड़ी बचत करके महिलाएं जो है ना एक इमरजेंसी फंड तैयार करती है, ताकि अगर परिवार पर कोई आर्थिक संकट अचानक से आ जाए तो बिना किसी परेशानी के उसका सामना किया जा सके। तो जब हम बात आपसे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे निवेश के बारे में, ऐसे लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में जानना चाहती हूँ जो महिलाओं को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए एक फंड तैयार करने में मदद मिले, तो कुछ ऐसी निवेश योजनाओं के बारे में बताइए।
2: देखिए, एक तो बच्चों का PPF अकाउंट भी खोला जा सकता है। PPF में न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रतिवर्ष तक आप जमा कर सकते हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के लिए माता पिता या अभिभावक के द्वारा उनका खाता खोला जा सकता है, जिसमें भी उनके विवाह के लिए और शिक्षा के लिए बाद में पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्राधिकरण के द्वारा, PFRDA के द्वारा NPS वात्सल्य करके एक स्कीम, पेंशन योजना खोली गई है, जिसमें कि आप 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए एक NPS वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रान नंबर मिलता है। वह पैसा आपको रिटायरमेंट प्लस एजुकेशन आदि बेनिफिट्स के लिए समय समय पर आप उपयोग कर सकते हैं। इसके भी अलावा अगर आप चाइल्ड एजुकेशन प्लान के रूप में बीमा निवेश करना चाहें, तो बीमा निवेश भी महिलाएं कर सकती हैं। ये काफ़ी योजनाएँ हैं जिनसे कि बच्चों का एजुकेशन, शिक्षा और उनके विवाह के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है। और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो म्यूचुअल फंड के लिए भी अलग अलग तरह के फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, और पर्टिकुलरली एजुकेशन पर्पज से तो इस तरह के फंड्स भी अवेलेबल हैं जो कि पूंजी बाजार से जुड़े हुए रहते हैं। थोड़ा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रिस्क फैक्टर वाला होता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए वो एक अच्छा रिटर्न उनसे मिल सकता है, और उससे जो कि भविष्य की सुरक्षित योजना बनाकर पूरा एजुकेशन और शादी या विवाह के लिए भी प्लानिंग अच्छी तरह से की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल, अगर प्लानिंग करके किसी काम को किया जाए ना, तो मुझे लगता है कि हम हमारे आने वाले भविष्य में थोड़ी निश्चिंतता को सोच सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, तो आजकल बहुत सारे स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हैं, तो जरूर एक स्वास्थ्य बीमा में भी इन्वेस्ट करना चाहिए।
2: जी, इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक है, जो जिसमें 420 रुपए की वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर किसी भी आप बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना उसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके एवज में आपको 2 लाख का एक इंश्योरेंस जो है आप सभी को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि जीवन बीमा कंपनियां जो भी रहती हैं वो पुरुष

0: में महिलाओं के लिए कुछ प्रीमियम दरें कम रखती हैं और महिलाओं को ऐसे इंश्योरेंस प्लान भी ऑफर करती हैं जिसमें कि समय समय पर पैसा मिलता रहे, जैसे कि मेटरनिटी कवर हो और स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर के लिए भी जिस कवरेज मिले। अलग अलग बीमा कंपनियों के अलग अलग प्लान हैं, महिलाओं के लिए काफी अच्छे प्लान्स अवेलेबल हैं।
1: जी जी सर, सर यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि बचत के सुरक्षित माध्यम क्या हो सकते हैं और किसी भी योजना को, किसी भी स्कीम को लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखें ताकि धोखाधड़ी से हमारी सखियां बची रहे।
0: जी जरूर, हर महिला निवेशक की सबसे पहले प्राथमिकता यह होना चाहिए कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों और ऐसी व्यावसायिक बैंकों, जो निजी स्तर की ऐसी व्यावसायिक बैंकों में निवेश करें जो कि RBI से लाइसेंसीकृत पंजीबद्ध हों, और उसके साथ में जो इन्वेस्टमेंट डिजिटल चैनल जो भी हैं उन डिजिटल चैनल्स का पूंजी बाजार में निवेश के लिए सेबी से रिलेटेड उनके पास में सारी जो आवश्यक फॉर्म जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी पूर्णता हो तो ही ऐसे संस्थानों में निवेश करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस जो है वो सबसे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेस है क्योंकि यह भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं। जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के निवेश हैं वह भी सेफ एंड सिक्योर हैं। अनजान व्यक्ति की व्हाट्सएप लिंक या किसी भी सोशल मीडिया लिंक पर बिना जानकारी के क्लिक नहीं करना चाहिए, जब तक कि किसी भी प्रकार का सीधा संपर्क बैंकिंग का कर्मचारियों द्वारा ना होता है तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी प्रदान नहीं करना चाहिए। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट।
1: मुझे लगता है कि बहुत सरल और उपयोगी जानकारी आपने हमारी महिला श्रोताओं तक पहुंचाई है और निश्चित रूप से हमारी महिलाएं इस बातचीत को सुनकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद मैम।
2: सखियों, अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता, महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता और निवेश विशेषज्ञ थे ईश्वर लाल खत्री और इनसे बातचीत कर रही थी शिखा साहू। और सखियों, अब आपके लिए है एक प्यारा सा गीत।

समय बाजारों की जो रौनक है ना, वो देखते ही बन रही है। चारों तरफ चमचमाती राखियां, हाँ, लेकिन दाम जरूर थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो क्यों ना इस बार राखी बाजार से ना लाकर खुद ही बनाई जाए। जी हाँ, अपने हाथों से राखी बनाई जाए। कुछ रंग बिरंगे धागे लीजिए, कुछ रंग बिरंगे मोती लीजिए, सजावटी सामग्री, और अपनी कल्पना को बदलिए अपनी रचनात्मकता में। जी हाँ, अपनी कल्पना से बनाइए एक प्यारी सी सुंदर सी राखी। घर पर बनाई गई एक सुंदर सी राखी आपकी रचनात्मकता की जो गतिविधि है ना, उसको उजागर करती है सखियो। और हाँ, अगर राखी बहुत अच्छी बन गई है तो क्यों ना इन्हें रिश्तेदारों में या आसपास बेचकर अपनी छोटी सी कमाई शुरू कर लें। स्वयं राखी बनाकर राखी नई तैयार करना, मतलब कि राखी सुंदर भी, समय का सदुपयोग भी और कमाई का मौका भी। सबसे खास बात तो सखियों ये है कि ये आपकी कला और मेहनत की कमाई होगी और आपके प्रेम से बनाई हुई राखी होगी। तो इस बार हाथ से बनाई राखी का विकल्प ज़रूर अपनाएं सखियों। रंग बिरंगे धागे में अपना प्यार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता का रंग भर दें और अपने टाइम का सदुपयोग कर लें।

हैं, खुदी हुई हैं या लंबे समय से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। तो चुप ना रहिए, आपको ये जानना जरूरी है कि इसकी शिकायत आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकती हैं। सखियो, सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित शिकायतें 24 घंटे सातों दिन दर्ज की जाती हैं। सबसे पहले अपना नाम और मोबाइल नंबर बताइए, फिर समस्या की पूरी जानकारी दीजिए। सड़क कहाँ खुदी है, किस मोहल्ले या वार्ड में सड़क की स्थिति क्या है, कितने समय से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। ज़रूरी हो तो आसपास की पहचान वाली जगह भी बता दें, ताकि विभाग को स्थान को समझने में आसानी हो। और फिर आपको मिलेगा एक शिकायत क्रमांक, इसे सुरक्षित रखें और इसी क्रमांक की मदद से अपनी शिकायत की स्थिति जांचती रहें। सखियो, समस्या जो है उस पर केवल चर्चा नहीं करनी है, उसे उचित माध्यम तक पहुंचाना है। सड़क की खराब स्थिति दुर्घटना और आवागमन की परेशानी का कारण बन सकती है। तो सखियो, चुप ना बैठें और समस्या बताएं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर इसे दर्ज कराएं, समाधान पाएं और एक जागरूक नागरिक बने। और सखियो, अब चलने का समय हो रहा है। तो आपको बता दें, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आप अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनेंगे।
1: बलराम सिंह यादव का गाया गीत और देवी सिंह यादव का गाया लोकगीत।

देवी सिंह यादव के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत में सुनिए अनुपम जैन के गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

अनुपम जैन के गायस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए,
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
5: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

फिल्म संगीत। पहला गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म आया सावन झूमके। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा चांदनी फिल्म से, आवाजें सुरेश वाडेकर और अनुपमा देश पांडे की, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है शिव हरी ने।

0: सुरेश वाडेकर के गाइस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे और स्थानीय नागरिकों से संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य सम्मान सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का बोध कराता है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि परिवार समाज और देश के विकास में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और योगदान से भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश के जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच मानसिक स्वास्थ्य और साइको सोशल काउंसलिंग के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। जेल विभाग के अनुसार 6 से 12 जुलाई तक 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को तनावग्रस्त बंदियों की पहचान और काउंसलिंग का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद संबंधित जेलों में बंदियों की काउंसलिंग की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। समझौते के तहत चयनित अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वे प्रदेश के अन्य जेलों के कर्मचारियों को काउंसलिंग का प्रशिक्षण देंगे। भारतीय महिला टीम आज एम्स्टर्डम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। नए प्रारूप में पूल ई से शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। दोनों टीमों ने मौके बनाए लेकिन गोल करने में असफल रही, जबकि भारत का रक्षात्मक पक्ष दूसरे मैच में मजबूत बना रहा।

इस ड्रॉ से टीम को पूल डी में महत्वपूर्ण दूसरा स्थान मिला। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की अनुमान है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, पन्ना, सीधी और सिवनी में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में नर्मदा, मंदाकिनी और अन्य नदियां उफान पर हैं। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है, जबकि गुप्त गोदावरी की गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। मैहर और पन्ना में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डिंडौरी में भी भारी बारिश के कारण स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखे गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाल्मीकि समाजजनों द्वारा कल आगरमालवा जिला मुख्यालय पर गोगा महाराज की प्रमुख मार्गों से निकाली गई छड़ी यात्रा में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज भी शामिल हुए। मंडला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय सह कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत नर्मदापुरम जिले की माकननगर के नगरी क्षेत्र में आज जन समस्या समाधान और संवाद शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 22 अगस्त तक गाजर खास जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सिंगरौली में किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन के माध्यम से फार्मर आईडी बनाने, पैक्स की सदस्यता दिलाने, उर्वरक के अग्रिम उठाव के लिए विशेष अभियान 20 अगस्त से 15 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। बुरहानपुर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बुरहानपुर कृषि उपज मंडी ने फिर छलांग लगाई है। लगातार बढ़ती आय और कृषि उपज की आवक के दम पर मंडी को ए ग्रेड का दर्जा मिल गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल

0: कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। यह समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जीएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
5: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और

0: आवश्यकता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय

0: महिला टीम आज अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्वकप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। डवाली हरियाणा से JK बोकोलिया, स्मिथ सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल और मीनू बोकोलिया। धामड़ी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्तर डेरे। आप सबने सुनना चाहा है कुमार सानू का गाया हुआ सर फिल्म का ये नगमा, संगीत अनु मलिक का।

आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुरा मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर, जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटरा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान डांगी पटेल, मिसेज बीना नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी, विक्रम डांगी, कालका से शुभचंद्र बजाज, चंद्रमोहन, इंद्रमोहन, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली पंजाब से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। आप सबने पसंद किया है अनजाना फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी के गीतों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश शोर फिल्म के इस गीत की है, आवाज़ें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की। इंद्रजीत सिंह तुलसी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन हटा, दिशा, खुशमूणत और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। साथ ही थाना रोड बक्सर से जीवद गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं शोर फिल्म का ये नगमा।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए काला बाजार फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र के लिखे गीत की धुन बनाई है SD वर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक, मीका बिरक। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए मंजिल फिल्म का ये गीत। योगेश के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, भोपाल एमपी से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव, विमल, आशा, राधिका श्रीवास्तव। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म माचिस से। गुलजार का गीत और विशाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, गरम पजोनिया जालोन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुर्शी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिकी, संजना परी, ललित नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती, छत्तीसगढ़ दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चारडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योग संवाद समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी शामिल होंगे, स्थानीय नागरिकों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व का बोध कराता है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि परिवार, समाज और देश के विकास में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव और योगदान से भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश के जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच मानसिक स्वास्थ्य और साइको सोशल काउंसलिंग के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और भारतीय महिला टीम आज एम्स्टर्डम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, 8:15 और रात 9:45। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। रात 9:30 खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे इसराल उल हक से ली गई भेंटवार्ता, विषय है मध्य प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग की संभावनाएं, भेंटकर्ता मनीष गजवीय। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात 10:00 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे धानी गुंदेचा का ध्रुपद गायन, राखों का केदार। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पप्पू राजा यादव और साथी का गाया लोकगीत, बलराम सिंह यादव का गाया गीत और देवी सिंह यादव का गाया लोकगीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

बूथ से टच कीजिएगा। अभी 4:37

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा

0: रोजाना आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए दो प्रश्न लेकर आते हैं, जिनसे आप सभी का ज्ञान वर्धन तो होता ही होता है, उसी के साथ आप सभी को जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनकी सटीक जानकारी भी आप तक पहुंच जाती है। तो आज के हमारे चुनिंदा दो प्रश्न कुछ इस प्रकार ही हैं, आइए उनको जान लेते हैं। महान कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो आप इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर खोज के रखिए और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ राज, हमारे इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर तो आज के हमारे कार्यक्रम में ही
0: बिल्कुल
1: छुपा है। तो
0: बिल्कुल
1: दोस्तों आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से और एंजॉय करते हुए सुनिए और बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि युवाणी कार्यक्रम में हम लोग डे स्पेशल्स पे बहुत बात करते हैं, और आज का हमारा डे स्पेशल भी कुछ अच्छा है और हमारे युवा साथियों से सटीक जुड़ता हुआ है।
3: बिल्कुल सही।
2: दोस्तों, आज है 21 अगस्त, और आज के दिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिन की जो उन लोगों को समर्पित है जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें सच करने का भी साहस रखते हैं। आज है दोस्तों विश्व उद्यमी दिवस, यानी कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने अपर्णा, क्योंकि उद्यमी यानी वह व्यक्ति जो किसी नए विचार को पहचानता है, जोखिम उठाता है और उसे एक व्यवसाय या फिर उपयोगी पहल का रूप दे देता है।
2: बिल्कुल सही कहा राज तुमने, और आज के दौर में तो उद्यमिता का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी शुरू करना नहीं होता है। एक छोटा स्टार्टअप, स्थानीय उत्पाद को नया बाजार देना, कोई सामाजिक समस्या हल करने वाला आइडिया, या फिर कोई नई टेक्निक के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाना, ये सब उद्यमिता के उदाहरण है। नहीं,
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे अभी कहा कि हम मतलब बड़े शहर में रहते ना ही हुए, जैसे छोटे जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर भी हम लोग उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। और आजकल तो प्रधानमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनके द्वारा कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स के लिए प्लान भी हमारी योजना में लाया जा रहे हैं, जो कि युवा जो हैं ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे, चाहे वो आचार पापड़ के उद्योग हो या फिर कोई से भी नवाचार हो, उन सबको वो लाकर एक व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। और भारत में तो युवाओं के बीच स्टार्टअप संस्कृति तेजी से विकसित हुई है। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत मंच तैयार भी किया है।
2: बिल्कुल सही कहा राज तुमने, और आज के भारत के युवा जॉब सीकर्स के साथ साथ अब जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। टेक्निक, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और यहाँ तक कि हैंडीक्राफ्ट्स, हर क्षेत्र में नए नए विचार सामने आ रहे हैं युवाओं के।
3: हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन हम सभी युवाओं के बीच एक बड़ी भ्रांति ये रहती है कि अर्पणा, क्या उद्यमी बनने के लिए सिर्फ पैसा होना ही जरूरी है?
2: नहीं राज, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सफल उद्यम की शुरुआत अक्सर एक अच्छे विचार, यानी कि सही योजना, सही प्लानिंग, मेहनत और लगातार सीखते रहने की इच्छा से होती है। हाँ, संसाधन और पूंजी महत्वपूर्ण है राज, लेकिन उससे पहले या उससे भी ज्यादा जरूरी है समस्या को पहचानना और उसका समाधान खोजने की सोच होना।
3: सही कहा तुमने। और अभी केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी योजना है जो हम उनका लाभ उठाकर इन नवाचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग को शहर में विकसित होते हुए दुकान, नवाचार, कुछ भी व्यवसाय हुआ, हम उसको आगे बढ़ा ही सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि हर बड़ी शुरुआत कभी एक छोटे से विचार से ही शुरू हुई थी।
2: बिल्कुल सही कहा राज तुमने। सरकारी योजनाओं की बात की तो भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहले भी तो एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने की दिशा में ही शुरू की गई है।
3: और दोस्तों, मुझे लगता है कि उद्यमिता का सफर हमेशा आसान नहीं होता, असफलताएं भी आती हैं, चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं, मगर एक उद्यमी की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि हार से सीखकर फिर से आगे बढ़ने का साहस।
2: बिल्कुल। आज विश्व उद्यमी दिवस पर आइए हम सब सफल उद्यमियों की कहानी सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने भीतर छिपे उस विचार को भी पहचाने जो भविष्य में किसी नई शुरुआत की वजह बन सकता है। दोस्तों,
3: क्योंकि साथियों, हो सकता है कि आज का आपका एक छोटा सा विचार
2: कल किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए।

0: shining sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है. ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है.
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट.
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें.
3: राज, अभी कुछ दिनों से पर्याप्त बारिश भले ही ना हो रही हो, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है ना.
4: सही कहा तुमने.
3: शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने लगती है, थोड़ा सा सर्द मौसम हो गया है. और दोस्तों, बारिश आते ही हम अक्सर बहुत खुश हो जाते हैं कि कहीं चाय पकौड़े का आनंद लेने लगते हैं, तो कहीं बारिश में भीगने का मजा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से बरसने वाला ये अनमोल पानी आखिर जाता कहाँ है?
4: ये तो तुमने सही बात कही है पढ़ना, क्योंकि हमारी छतों, सड़कों और गलियों में गिरने वाला अधिकांश पानी बहकर नालियों में चला जाता है, जबकि अगर इस पानी को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए तो ये भविष्य में हमारे बहुत काम आ सकता है.
3: बिल्कुल सही राज, और इसी बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ. इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल संचयन. इसमें बारिश के पानी को संग्रहित किया जाता है या फिर उसे जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल को पुनर्भित करने में मदद की जाती है.
4: बिल्कुल, क्योंकि इस सीजन जो गर्मी है, हमने पानी की किल्लत सब जगह देखी है, चाहे वो शहर हो चाहे कोई सा भी गांव हो, और आज इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा लगती है मुझे, क्योंकि बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती जरूरत के कारण भूजल पर दबाव बढ़ रहा है और कई जगह पर तो जल स्तर भी नीचे तक जा रहा है.
3: बिल्कुल राज, कई जगहों पर इस बार मैं सिर्फ गांवों का ही नहीं, शहर की भी अगर उदाहरण दूं तो हमें टैंकर्स कई दिनों तक मंगवाने पड़े हैं. तो यानी कि हम सच में जो पानी आता है बारिश का, उसे हम व्यर्थ ही बहा रहे हैं.
4: बोरिंग नल सारे सूख से गए.
3: बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान हमारे सिर के ऊपर से ही बह रहा है. घरों की छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को अगर हम पाइप के माध्यम से टैंक में इकट्ठा कर ले या रिचार्ज पिट के जरिए जमीन में पहुंचा दे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है.
4: और ये कोई सोच भी नहीं है, भारत में सदियों से तालाब, कुएं और बावड़ियों के माध्यम से पानी को सहजने की परंपरा हमारे पुरखों की रही रही है.
3: बिल्कुल, और आज सरकार भी जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है राज. कई प्रयास वो सरकार कर रही है, जैसे जल शक्ति अभियान और द कैच द रेन वेयर इट फॉल्स When it falls, मतलब बारिश जहां गिर रही है और जब गिर रही है बस उसे सहेज लो. ऐसे अभियान लोगों को बारिश के पानी को सहेजने के लिए बहुत प्रेरित कर रहे हैं.
4: बिल्कुल सही कहा तुमने, सरकार तो खैर कार्य कर रही है, पर हम जो नागरिक है देश के, हम सभी का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रकृति को जितना सहज सकें, जितना बचा सकें, उसकी जितनी सुरक्षा कर सकें, वो हम सभी के हाथ में है. तो यानी संदेश बिल्कुल साफ है साथियों, बारिश के पानी को बह जाने के देने के बजाय उसे भविष्य के लिए बचाइए.
3: बिल्कुल, और हमें पानी की बहुत ज्यादा मूल्य हमें तब समझ आता है जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है और पानी के स्तर कम हो जाते हैं. लेकिन हम तब क्यों नहीं समझते जब हमें ये पर्याप्त मात्रा में बरसात के मौसम में मिल रहा होता है, तो तब हम शायद अवेयर हो जाए कि हम इसे सहेज लें तो हम गर्मी में परेशान नहीं होंगे.
4: मतलब इस कुल मिला के अभी सीजन है तो हम पेड़ भी अधिक से अधिक लगाएं और जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण करने का पूरा पूरा प्रयास करें.
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो चलिए दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें थी जो हमें आपसे साझा करना जरूरी लगी. अब इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर.

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कलाकार हमेशा अपनी कला के जरिए जिंदा रहते हैं। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस महान विभूति को, जिनके शहनाई की आवाज ने न केवल संगीत के मंच को बल्कि देश की आत्मा को भी स्वर दिया है।
3: दोस्तों, आज है महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की

0: उनके शहनाई में बनारस की संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब और भारतीय संगीत की आत्मा सुनाई देती है। वे बनारस के गंगा घाटों और मंदिरों के वातावरण में गहराई से जुड़े रहे। उनके लिए संगीत केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता था।
1: बिस्मिल्ला खान साहब की कला की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सादगी, समर्पण और सुरों के प्रति अद्भुत निष्ठा। उन्होंने दुनिया के कई बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई।
0: उन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके पहले उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए।
1: बिस्मिल्ला खान साहब का जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है। प्रतिभा तभी पहचान बनती है जब उसके साथ निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण जुड़ा हो।
0: श्रोताओं, उन्होंने ये साबित किया कि अगर कलाकार अपनी कला के प्रति ईमानदार रहे तो एक साधारण सा वाद्य भी पूरी दुनिया में अपनी अलग और अनूठी पहचान बना सकता है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। उनकी शहनाई की वो मधुर आवाज हमेशा याद दिलाती रहेगी कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, सुर सीधे दिल तक पहुंचते हैं।
0: तो आइए श्रोताओं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं उनका ही बजाया हुआ एक फिल्मी गीत में ये गीत।

0: खेल की दुनिया में आज की शुरुआत करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार उपलब्धि के साथ। दोस्तों, हॉकी के मैदान से आई ये खबर भारतीय खेल प्रेमियों के लिए गर्व और उत्साह से भर देने वाली है। वर्ल्ड कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दूसरे राउंड में अपनी जगह बना ली है।
1: गुरुवार को पूल डी के अंतिम मुकाबले में भारत का सामना मेजबान इंग्लैंड से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ।
0: लेकिन इस ड्रॉ का भारतीय टीम को बड़ा फायदा मिला। भारत ने अंतिम 8 में क्वालिफाई कर लिया है, वहीं चीन ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में गोल करने के कई मौके बने। भारतीय टीम ने 6 पेनल्टी कॉर्नर प्राप्त किए, लेकिन टीम उन्हें गोल में नहीं बदल सकी। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया और इंग्लैंड को भी गोल करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया।
0: यानी साथियों, स्कोरबोर्ड भले ही 0-0 रहा, लेकिन मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा और संघर्ष देखने लायक था। दोस्तों, किसी बड़े टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए केवल गोल करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि दबाव के बीच संयम बनाए रखना और टीम के रूप में मजबूती दिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एक खिलाड़ी के लिए होता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस मुकाबले में यही दिखाया।
1: बिल्कुल, और टूर्नामेंट में भारत ने इससे पहले अफ्रीका को हराया था, जबकि चीन के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था।
0: भारतीय महिला टीम का टूर्नामेंट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1974 में चौथे स्थान पर रहा था। ऐसे में इस बार टीम के पास इतिहास रचने और इससे भी बेहतर करने का एक शानदार मौका है।
1: बिल्कुल राज, अब थोड़ी सी बात क्रिकेट की भी हो जाए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का शानदार आगाज करते हुए पहले मुकाबले में दमदार जीत दर्ज की है।
1: जी हाँ दोस्तों, गोल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
0: भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और पूरी टीम ने 206 रन पर सिमट गई।
1: ये जीत भारतीय टीम के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम को चौथी पारी में बड़ा लक्ष्य देना और फिर उसका सफलतापूर्वक बचाव करना टीम के गेंदबाजों और फील्डरों के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।
0: साथियों, अब नजरें सीरीज के दूसरे और निर्णायक मुकाबलों पर है। दूसरा टेस्ट मैच यानी 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वे दूसरे टेस्ट मैच में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखें और सीरीज को अपने नाम कर सकें।
1: बिल्कुल, वहीं श्रीलंका की टीम वापसी के इरादे से इस बार मैदान में उतरेगी।
0: दोस्तों, अब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों को प्री क्वार्टर फाइनल में निराशा हाथ लगी है। 5 बार के मेडलिस्ट पीवी सिंधु और जापान किलर आयुषी शेट्टी अपने अपने मुकाबलों में हार कर बाहर सी हो गई।
1: बिल्कुल, महिला एकल में 9वीं वरीयत प्राप्त सिंधु को चीन की वांग झीयी ने 3 गेम के कड़े मुकाबले में हराया। वहीं पुरुष एकल में आयुष शेट्टी को इंडोनेशिया के अलवी फरहान के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
0: मिक्स डबल्स में भी भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने उनकी जोड़ी ने चीन की जोड़ी से हार कर प्रतियोगिता से बिल्कुल बाहर का रास्ता नाप लिया।
1: हालांकि भारतीय खिलाड़ियों का जुझारूपन और संघर्ष पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला। खेल हमें ये सिखाता है दोस्तों कि जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार प्रयासरत रहना।
0: तो युवाओं, आज का संदेश बिल्कुल साफ है, मैदान कोई भी हो, चुनौती कितनी भी चाहे बड़ी हो, कोशिश कभी छोटी नहीं होती, इसलिए निरंतर लगे रहना चाहिए।

0: दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है, तो आइए नजर डालते हैं सप्ताह की विज्ञान और तकनीक की कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है भारत और चांद से जुड़ी बड़ी उपलब्धि पर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने प्रस्तावित मून बैश प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है।
1: श्रोताओं, ये प्रस्ताव चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास भविष्य में लंबे समय तक मानव गतिविधियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग के लिए भी इसे बड़ी पहल माना जा रहा है।
0: वहीं दूसरी खबर है अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कॉन्वलेक में इसरो के वैज्ञानिकों ने भविष्य में उपग्रह और अंतरिक्ष अभियानों में AI, मशीन लर्निंग और क्वांट्स तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इससे उपग्रह को अंतरिक्ष में ही आंकड़ों का विश्लेषण करने और ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने में सहायता मिलेगी।
1: साथ ही आज की इस कड़ी में तीसरी खबर है अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिला वैज्ञानिक का सम्मान। भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को 2026 का COSPAR विक्रम साराभाई मेडल मिला है। वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और विशेष रूप से महिला वैज्ञानिक के लिए प्रेरणादायक है।
0: वहीं चौथी खबर है अंतरिक्ष में एक्सरे तकनीक का सफल प्रयोग। वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष में पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। भविष्य में चंद्रमा या मंगल जैसे लंबे अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की स्वास्थ्य जांच में ऐसी तकनीक उपयोग साबित हो सकती है।
1: दोस्तों, साथ ही एक और रोचक खबर है कि अब नासा का नया AI प्रोसेसर आया है। नासा के वैज्ञानिक एक ऐसे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली स्पेस कंप्यूटिंग प्रोसेसर का प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो मौजूदा अंतरिक्ष प्रोसेसरों की तुलना में करीब 500 गुना अधिक प्रोसेसिंग क्षमता देने वाला है। इसका इस्तेमाल भविष्य के अंतरिक्ष यानों में यानी AI आधारित निर्णय और वैज्ञानिक आंकड़ों के तेज विश्लेषण के लिए किया जाएगा।
0: तो दोस्तों, ये थी इस सप्ताह के विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कुछ खास खबरें। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है साथियों, ये हमारे मोबाइल से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को लगातार आगे बढ़ा रहा है।
1: बिल्कुल, इसलिए युवा साथियों, जिज्ञासु बनिए, सवाल पूछिए और नई चीजें सीखते रहिए, नई तकनीकियों को अपनाते रहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य विज्ञान और तकनीक को आकार देने वाला है।

0: तो साथियों, ये था आज का युववाणी प्रोग्राम, जिसमें आज साइंस और स्पोर्ट्स स्पेशल था। हम प्रयास करते हैं कि सप्ताह की जितनी भी मुख्य खबरें हैं आप सभी के बीच लेकर आ सकें, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ी हों या फिर बैडमिंटन या फिर हॉकी से जुड़ी हों या फिर विज्ञान में नए नए जो नवाचार होते हैं, चाहे वो प्रयोगशाला में हों, चाहे वो किसी भी अंतरिक्ष यान को लेकर हों, तो उन सभी की खबरें हम देने का आप सभी को प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि ये खबरें आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी सही होती होंगी और आपका ज्ञान भी बढ़ाती होंगी।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, अब श्रावण का महीना चल रहा है और इसी के साथ अब लगातार त्योहारों की पंक्ति सी लग जाने वाली है। एक के बाद एक त्योहार आने वाले, राखी आने वाली
0: बिल्कुल
1: है,
0: सही है।
1: तो आप लोगों को अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। और हम जानते हैं कि सभी के घर में अलग अलग स्तर पर तैयारियां तो जोर शोर से चल ही रही होंगी।
0: हाँ, क्योंकि अर्पण होता ही है, जब रक्षाबंधन आती है ना, तो तुमने जैसे अभी कहा कि तैयारियों की जो झड़ी लगने वाली है, तो रक्षाबंधन से सारे जो भाई भी होते हैं तो उनको भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है अपनी पॉकेट की ओर, कि हमारे पास कितना क्या धनलक्ष्मी है, ताकि हम आगे हमारी जो बहन है उनको अरे नए नए उपहार दे सकें और उनका
1: बिल्कुल।
0: उनको बिल्कुल खुश करने का एक उपाय ढूंढ सकें।
1: और अभी चूंकि एक ही हफ्ता बचा है रक्षाबंधन में,
0: हाँ
1: तो अभी तो सब घरों में यही सारे भाई इस टेंशन में होंगे कि हम
0: हाँ
1: क्या दें, और सारी बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खोजने निकल पड़ी
0: हाँ
1: होंगी,
0: और मुझे
1: नहीं?
0: लगता है कि पहले के ज़माने में शायद बहनें इतनी डिमांड नहीं करती थी उपहारों की, और आपका जो सीज़न हो गया, थोड़ा सा जो जेंजी ज़माना हो गया है, तो कपड़ों से लेकर नए जो गैजेट्स हैं उसको लेकर डिमांड्स बढ़ रही है मार्केट में, कि जो अपने भाई हैं वो अपने सिस्टर को दें, तो ये एक
1: बिल्कुल।
0: नया सा चलन
1: पर
0: है।
1: आज मुझे ऐसा लगता है कि यही तो मौका है जो त्योहारों को और ज्यादा उत्साहपूर्ण बनाता
0: हाँ
1: है। यही छोटी
0: खैर, ये
1: छोटी
0: तो
1: नोक झोंक,
0: एक
1: छोटी छोटी चीजें हैं जो
0: हाँ
1: हमारे त्योहारों को बड़ा बनाती है।
0: हाँ खैर, ये तो छोटी छोटी बात ही हो गई, पर सबसे ज़्यादा बड़ा एक कर्तव्य जो भाई का होता है वो बहन की रक्षा करना और उसका सुख और दुख में ध्यान देना।
1: चलिए, तो दोस्तों आपको सभी आने वाले त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाने से पहले हम आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाते हैं।
0: साथियों, आज का पहला प्रश्न था कि शहनाई वादन के महान कलाकार उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उनका उसका सही उत्तर है शहनाई।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि भारत के किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, उसका उत्तर है मिल्खा सिंह। तो इसी के साथ अब दे जी अपर्णा,
0: और अपने साथी राज को अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युववाणी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फिल्म संगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दुल्हन एक रात की फिल्म का गीत। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सबदंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
2: जी
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
2: जी
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
3: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
3: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
2: जी।
3: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
2: जी।
3: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
2: जी।
3: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
3: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
2: जी।
3: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
2: जी।
3: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये है कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
3: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
2: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
3: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
2: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
3: तो हम कहना चाहते हैं,
2: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
3: आप हैं।
2: बिल्कुल।
3: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं,
3: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
3: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
4: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी,
5: और मैं हूँ झुमरू।
4: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरो जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
5: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
6: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
7: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
7: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
1: बताओ।
7: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
6: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
7: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास
0: बहुत बड़ी
3: पैसे।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए।
4: ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो, अब तुम्हारी बारी है।
3: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे। हाँ, जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
8: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का।
7: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
9: जी आदाब बजा लाता हूँ जनाब, मुहानी की खिदमत में।
8: अरे आप, आदाबर्ज आइए आइए, तशरीफ रखिए।
9: जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
8: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
9: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
8: जी बस
9: जी।
7: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था, वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
8: जनाब बस जरा सी देर और बस, यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
9: जी जी आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
7: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
9: मुहानी साहब
8: जी,
9: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
8: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
9: क्या मतलब?
7: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
8: ये लीजिए खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
9: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
8: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
9: या खुदा,
8: नौश फरमाइए मियां,
9: लाइए
8: खाइए।
10: हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
7: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
11: लिख दिया।
8: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
12: इरशाद इरशाद इरशाद ग्रामी।
8: है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
11: वाह क्या बात है। है मश्के सुखन जारी,
8: चक्की की मशक्कत भी।
11: वाह
8: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
11: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत।
12: क्या
11: क्या
7: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
11: चला क्या खूब गजल कहते हैं आप।
9: मुहानी साहब मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
8: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
11: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
8: जी नहीं नहीं नहीं,
9: मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
8: माफ कीजिए मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
9: हाँ? नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
11: क्या?
9: जी एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
8: अरे मान साहब शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, बे टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
11: आप भी मान साहब। लेकिन मान साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
8: नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
9: मानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
8: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
11: मानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
7: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया।

0: ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
1: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
0: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
1: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, शब्बा खैर।
1: शब्बा खैर।
0: बला की ठंड है,
1: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदां था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं उमेश भट्ट की गाई गजलें। सबसे पहले सुनिए हीरालाल मिलान का ये कलाम।

सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं उमेश भट्ट की गाई गजलें। लीजिए अब सुनिए मखमूर सईदी की लिखी गजल उमेश भट्ट के स्वर में।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उमेश भट्ट की गाई गजलें। ये आकाशवाणी इंदौर है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं चंद्र प्रकाश सोनवे और साथी। आइए इनसे सुनते हैं ये निमाड़ी लोकगीत।

0: लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद्रप्रकाश सोनबे और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि विरोध न तो विद्यार्थियों के हित में है और न ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन सकते हैं रात 8:15। पुराने सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत आप सुनेंगे रात 9:15 और 9:30 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आज रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रागिनी देवले का गायन। राग होगा भूपाली। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:30। 6:35 पर कार्यक्रम खेती की बातें में कल हम आपको सुनवाएंगे सोयाबीन फसल में समसामयिक सलाह विषय पर डॉक्टर बी यू दुपारे की जानकारी। 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। 7:20 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुनहरे पल। फिल्म संगीत सुबह 8:30। लोक संगीत में सुबह 9:00 कलाकार होंगे बाबूलाल सोलंकी और साथी। सुगम संगीत में 9:15 आप सुनेंगे सीमा परवीन को और शास्त्रीय संगीत में 9:30 आपको सुनवाएंगे बलवंत राय भट्ट का गायन। राग होगा अहीर भैरव। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00 इसका अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा और 10:05 से आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

दिन में 11 बजे से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसमें 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। संग्रहालय से दिन में 12:30 बजे महिला कार्यक्रम, दिन में 1 बजे लोक संगीत, 1:30 बजे और सुगम संगीत 1:45 पर। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 बजे। अब एक नज़र शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कल का आकर्षण रहेगा क्रम हेलो फ्रेंड्स। 5:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6 बजे विशेष कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे विकसित होता भारत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारत संचार निगम की जनहितैषी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम। इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी, पंकज उपाध्याय से ली गई। सुगम संगीत में सीमा परवीन को आप सुनेंगे शाम 6:30 बजे और 6:45 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे बाबूलाल सोलंकी और साथी। कल शाम 7:30 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित किसान वाणी। सुर्खियों में कार्यक्रम होगा रात 8 बजे भोपाल केंद्र से। 8:15 बजे दिल ने फिर याद किया। रात 9:15 बजे आप सुनेंगे चित्र गीत। राष्ट्रीय पत्रिका विज्ञान भारती आपको सुनवाएंगे कल रात 9:30 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। इसे भी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये रूपरेखा थी इस सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा, घुसपैठ रोकना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ में आंगनबाड़ी और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रदेश में निवेश और विकास की संभावनाओं पर विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई नदियां उफान पर हैं, कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने समारोह के बाद जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि एसएसबी के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्रियों को पहले भी आमंत्रित किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, घुसपैठ रोककर पश्चिम बंगाल और देश को सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है और फेंसिंग इसका सबसे मजबूत उपाय है। इसलिए शुभेंदु जी ने मात्र 45 दिनों में ही बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई।
1: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं, मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ प्रवास के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र तखा और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी में लाडली बहनों और बेटियों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाले नाश्ते और भोजन की जानकारी ली तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नन्ही बालिका वैष्णवी का अन्नप्राशन भी कराया। जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री ने ओपीडी लैब ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने 2 सर्पदंश और 1 दुर्घटना के मरीजों से मुलाकात की तथा एनआरसी में भर्ती 19 कुपोषित बच्चों को सेहत की टोकरी वितरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी चिन्मयानंद महाराज का भारतीय समाज, युवाओं के नैतिक विकास और श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार में योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में चिन्मय अमृत यात्रा को केसरिया झंडी दिखाकर झांसी के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ से शुरू हुई यात्रा रीवा, सतना, बैतूल, नर्मदापुरम होते हुए भोपाल पहुंची। मुख्यमंत्री ने स्वामी चिन्मयानंद मिशन के सामाजिक कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि सरकार मिशन के प्रयासों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बुधनी विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के 30 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता परिवार और पूरे समाज के लिए गौरव है। श्री चौहान ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास के साथ मेहनत करने का आह्वान किया।
2: समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल नई दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में शामिल होंगे। वे एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया सत्र में मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसर और विकास की संभावनाओं पर विचार साझा करेंगे। फोरम में प्रदेश के टेक्सटाइल क्षेत्र और निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। पीआईबी भोपाल द्वारा आज बुरहानपुर में आयोजित मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को सहजता से मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मीडिया से योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उनके सुझाव सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने 32 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया। अधिकारियों को विभिन्न विभागों, नगर निगमों और जिला पंचायतों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें अभिषेक चौधरी को ग्वालियर नगर निगम का आयुक्त, संजय प्रिय को जिला पंचायत सिंगरौली और नितिन बघेल को जिला पंचायत देवास का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर से पूर्वी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हैं। डिंडौरी, पन्ना, रीवा, सतना और छतरपुर में तेज बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नर्मदा और मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश की संभावना है। सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी बाजार तक पहुंच गया है, जबकि माओगंज में नदी में फंसे मजदूरों में से एक के बहने की सूचना है। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 11% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला कलेक्टर ने आज नारायणगंज के रानी दुर्गावती सीनियर कन्या छात्रावास और मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कूड़ा मैली का निरीक्षण किया। देवास में अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं उद्यमियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से SC/ST उद्यमिता समागम आयोजित किया गया। गुना में आज मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनपद पंचायत आरून की ग्राम पंचायत झाझौन में आयोजित 3रा जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया। वहीं आगरमालवा जिले के डोंगरगांव में आज आयोजित हुए शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 146 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। उधर सतना जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत मजगवा में शिविर आयोजित किया गया। निमाड़ के आराध्य संत सिंगाजी महाराज का 467वां समाधि दिवस आज खंडवा जिले स्थित सिंगाजी धाम में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आज सीहोर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आज कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कोलारस कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविर में जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण किया। रायसेन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत विकासखंड बेगमगंज के सुल्तानगंज क्लस्टर स्थित ग्राम पंचायत टीकापार मुंजापता में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। वहीं सागर के जैसी नगर में खंड स्तरीय जन विश्वास शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शेड्यूल पुलिस अधीक्षक ने 15 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की पदस्थापना में बदलाव किया है। कई थानों के थाना प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो पिछले 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

खेती गृहस्थी की चौपाल पायला सभी भाई बहन नकद तृप्ति की राम राम। भाई बहन नोन, बरसात को मौसम आई गयो ज, जहाँ अपनी फसल लहलाई रही ज, वहाँ सावन को महीनों भी आई गयो ज, अपन पूजा पाठ में भी लगेल छे। तो आज अपन बात करांगा कि खरपतवार नियंत्रण कसो करा, और साथ ही अपन सावन का गीत न को भी आनंद लेवांगा। तो सबसे पहले अपन बात करा खरपतवार नियंत्रण की। तो भाई बहन नोन, अपनी खड़ी फसल का साथ में कई ऐसा पौधा उग गया है जो कि अपनी फसल में नहीं है, मतलब अपनी फसल का अलावा जो पौधा उग गया हुआ जो अपनी फसल का पोषक तत्व न का पानी का उसकी जगह का उसका साथ साथ में लेना बैठी जाए, है ना, अपनी फसल से तेज वो पौधा उगने लगी जाए, ऐसा पौधा न का अपन कवा खरपतवार। तो अब खरपतवार कसा उगी जाए भाई, पहली गलती अपनी यहाँ हुई सकज कि जब अपन बीज डालन तो बीज न का ढंग से देखता नहीं है, न उसका साथ में अगर कहीं का बीज दूसरा बीज आई जावज, दूसरों अनाज आई जावज, या दूसरा कहीं का ऐसा बीज आई जावज जो अपना फसल में नहीं चाहिए तो वो भी साथ साथ उगी जाएगा। तो पहली सावधानी अपना कर रखनूज कि जब अपन बीज बोआ तो साफ सफाई से बिनी चुनी कर बोआ। दूसरी बात यह है कि कभी बोई जाए ऐसा बीज तो उनका हाथ न से जब अंकुरित होएगा तो अपना का समझ में आ जाएगा कि कहाँ का बीज अपना फसल का छे, कहाँ का बीज जो छे वो खरपतवार छे। तो उनका जब वो उगना लगा तो अपना हाथ न से निंदाई गुड़ाई करी उनका हटे सकन। अब एक बाद में भी अगर गलती से अपनी खरपतवार बड़ी हुई जाए तो अपना का कई करना चाहिए, हमारा किसान भाई इन्हीं बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ की फसल कीना समय लगज, न ओका साथ में कहाँ का दूसरा पौधा और उगी सकज। फसल चक्र को न फसल उगाना का समय को अगर ध्यान रखो जाए तो खरपतवार को बहुत हद तक अपन नियंत्रित कर सकन। अब फिर भी अगर खरपतवार उगी जाए तो बीज न का साथ जब अपन बीज बोवाएं उस समय खरपतवार का अंकुरण से पहले एक दवाई आवे जेको नाम छे पेडी मिथाइलिन, ओकर डाली दियो तो जो खरपतवार का बीज छे वो नहीं उगेगा। अन्य खरपतवार कदी उगी जाए तो अंकुरण पश्चात की दवाई आवज जो कि दो तीन पत्ती को अपनो खरपतवार हुई जाए ओका पर अगर छिड़की दो तो वो कभी नियंत्रित कर सकन। अब ये तो ही गई अपनी विधि ना जेका से कि अपन खरपतवार का नियंत्रित कर सकन। जहाँ अपन जैविक की बात करें तो कई का ऐसा कीड़ा भी आवज जो कि दूसरी फसल लगा खाई जाए, जैसे जहरीली गाजर घास सबसे बड़ो खरपतवार हुई गई आजकल अपना पास, तो ओके खत्म करने के लिए जायगोग्रामा बाइसी कोलेटा नाम को एक कीड़ो आवज ओके अपन मतलब ओके जो अपना कृषि विज्ञान केंद्र छे वहाँ पर अभी उपलब्ध रहे वो ले आओ ना अपना खेत में छोड़ दो। तो यह अपनी खाली ओके का ही पसंद छे गाजर घास, तो ओके खाएगा न खत्म कर देगा, तो हिंग लगन फिट करी रंग भी चोखो है, बात तो सही है कि नहीं। अने मैंने कई कहे थो कि सावन को महीनों आए गए तो ओकी भी बात करांगा अपन, पर सबसे पहला आनंद लेवांगा अनुसैया बोरलिया का बोलने से लोकगीत का माध्यम से सावन का गीत को। तो पहले लेवांगे आनंद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: भाई बहन अपन बात कर रहा था कि सावन को महीनो छे बड़ो सुहानो लगज, पर सावन का महीना में पानी क्यों आवज? पोरा पारी ने मार से पूछो तो मैंने फिर पतो करो तो मैं पतो चलो कि एका पीछे एक कहानी भी छे कि इना समय में समुद्र मंथन हुयो थो। न समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकलो बहुत जो विषेलो थो अन ओके पियो कि न थो अपना महादेव बाबा ने बोला भला था कहला हों पी लो न ओके पियो तो का बाद में उनको खूब गर्मी हुई तो देवता ने का डर लगे कि कहीं इनको माथो फेरी को तो अपना के खत्म कर देगा। तो फटाफट सबने ने कहीं करो पानी वरसायो, उनको जल अभिषेक करो जेका से कहीं हुयो उनका ठंडक पहुँची। तब से सावन का महीना में बरसात भी हो न ओके मुख्य उद्देश्य ये रहे कि भगवान शिव का ठंडक अन जो छे शांति मिले। तो एकाले अपन लोग भी कहीं करें सावन का महीना में शिव जी की उपास व्रत ध्यान करें न एका पीछे एक

0: हरियाली हुई जाए, वातावरण बड़ो शांत ने बड़ो खुशहाल हुई जाए। ऐसा मौसम में अगर अपन पूजा और ध्यान कराएं तो अपनों जो दिमाग छे वो भी संतुलित रहे। अने तीसरी बात सावन का महीना की यह विशेषता छे कि इना मौसम में कई हो कि पानी में मुक्ता परजीवी ने जीवाणु कीटाणु हुई जाए। पानी को न भोजन को अगर अपन असावधानी से सेवन कराएं तो अपना का पाचन शक्ति में तकलीफ हो, क्योंकि इना मौसम में पाचन शक्ति कमजोर हुई जाए। तो ऐसा में अगर अपन व्रत ने उपवास कराएं तो अपनों पाचन भी अच्छो रहे। तो भाई सावन का महीना में शिव आराधना अने सावन का महीना में उपवास रखने को यो महत्व छे। महत्व तो हर बात को रहे, अने महत्व इनी बात को भी रहे कि अपने चौपाल पर से अपन काकी बात सुनी रहे। तो आज अपन सुनांगा एक स्थल आधारित चर्चा जेका करेगा डॉक्टर के एच सिंह, निदेशक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था इंदौर से। अने वो अपना का बतावेगा कि सोयाबीन में समसामयिक देखभाल कई करा। तो सुनाइए स्थल रिकॉर्डिंग।
1: भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर के एच सिंह, निदेशक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। और मुझे इस बात की खुशी है कि सोयाबीन का जो अभी तक मौसम चल रहा है और फसल की जो बढ़वार है वो काफी अच्छी है, और आशा करते हैं कि जो अभी लगभग 50 से 60 दिन की और फसल बची है वह भी यदि अच्छी रही तो हम बहुत अच्छी उत्पादकता इस वर्ष प्राप्त करेंगे। भाई देखने में ये आया है कि जब फूल आना प्रारंभ होता है सोयाबीन में बीमारियों का और कीट की जो प्रकोप है वो भी उसी समय से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह समय आपको अपनी फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। कृपया ध्यान दें कि जैसे ही आपको पता लगे कि मेरे फील्ड में किसी पत्ती पर बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान करना कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी के लिए बताए गए नियंत्रण के लिए जो दवा बताई गई है उसको उचित मात्रा में प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। यदि बीमारी बढ़ जाती है तो कई बार स्प्रे करने से या किसी भी प्रकार की नियंत्रण विधि अपनाने से कंट्रोल नहीं हो पाती। तो समय पर और उचित मात्रा में उचित दवा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हम हर सप्ताह हमारे संस्थान से वीकली एडवाइजरी, साप्ताहिक सलाह प्रकाशित करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादातर किसानों को हम पहुंचा रहे हैं। आप उसमें पूरा देख सकते हैं कि बीमारी की पहचान कैसे करें, कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, कितने पानी में मिलाएं। तो ये सब यदि आप इस प्रकार से अटेंटिव रहेंगे, सावधानी रखेंगे तो आप इनका नियंत्रण कर पाएंगे। इसी प्रकार से कीटों के प्रकोप की भी संभावना है इन दिनों। तो इस सोयाबीन में जैसे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, येलो मोज़ेक वायरस आता है, राइजोक्टोनिया का ये एरियल ब्लाइट आता है, चारकोल रूट नाम की डिजीज है, ऐसे ही इसमें अनेक प्रकार के कीट भी लगते हैं, लगभग 35 से भी ज्यादा प्रकार के कीट लगते हैं। तो इनके भी नियंत्रण के लिए हमने उसमें सभी जानकारी उपलब्ध कराई है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए केवल एक विधि पर ही निर्भर न रहें, बल्कि जो पूरा पैकेज बताया जाता है सीड ट्रीटमेंट से स्टार्ट करके सोइल प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर का उस समय प्रयोग और उसके बाद वीड का मैनेजमेंट, दवाओं के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम, यदि आप पूरे पैकेज का प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की सोयाबीन की पैदावार ले सकते हैं। ये भी आपको बताना चाहूंगा कि सोयाबीन मुख्यतः सब लोग इसको तिलहनी फसल के रूप में लेते हैं और तेल के ही लिए मार्केट में बेच देते हैं। यदि किसान भाई इसमें वैल्यू एडिशन करना सीखें कि इसके किस तरीके से बेहतर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और उसे मार्केट में बेचें तो आप दूनी से भी ज्यादा आय अपनी उपार्जित कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे किसान भाई जानते भी होंगे कि सोयाबीन से सोया पनीर या जैसे टोफू कहते हैं, और ये टोफू मार्केट में 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बिकता है, जबकि इसको बनाना बहुत आसान है और इसमें बड़ा कम खर्चा भी आता है। गुणवत्ता की दृष्टि से ये डेयरी पनीर से भी बेहतर है। इसी प्रकार सोया से दूध भी बनता है, तो

0: या मिल्क भी मार्केट में, और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डेयरी मिल्क से एलर्जी होती है, तो उन्हें सोया मिल्क की ही एडवाइस दी जाती है। तो ऐसे अनेक प्रोडक्ट्स हैं जो सोयाबीन से बनाए जा रहे हैं, और क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 40% या उससे भी ज़्यादा होती है, तो ये जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए भी सबसे बेहतर फसल के रूप में जानी जाती है। और बहुत अच्छे टेस्टी और प्रोडक्ट्स आजकल मिल रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो किसान भाई हमारे संस्थान में भ्रमण करना चाहें, उनको हम सिखाते भी हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप उस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं, अनुभव प्राप्त करें, यहाँ सीखें और सोयाबीन के भिन्न भिन्न उत्पाद बना करके न केवल अपने प्रयोग में लाएं अपितु बाजार में बेच करके अधिक मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो भाई बहनों, अभी अपन सुन रहे था डॉक्टर के एच सिंह, निदेशक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था इंदौर का। उन्होंने अपना के बड़ी अच्छी जानकारी दी कि सोयाबीन में सामयिक अपन कई करा, ओका अलावा भी ऐसी चीज़ ने रहे जो अपना किसान भाई ने का ध्यान रखना चाहिए कि बरसात का दिन चली रहा है, अपनी जमीन में कई जल भरा हुई जाए तो कि निकासी की व्यवस्था रखनी चाहिए। एक ऐसे कई होगा कि जो फफूंद जो कि नमी में लगी जाए अपना पौधा न की जड़ में, ओके लगने की संभावना कम हो जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई का अपना खेत की निगरानी करते रहना चाहिए, बार बार जाई कर तीन चार जगह पर जाई कर न पेड़ न की पत्ती न का नीचे से ऊपर से देखना चाहिए और कि जड़ न का देखना चाहिए कि कहीं कई कीट को प्रकोप तो नहीं हो रही, क्योंकि सावधान रहवांगा तो सुरक्षित रहवांगा। तो पहले जब अपना कई चीज़ को ध्यान रखनी चाहिए ना अपना खेत में, जब भी अपन सोयाबीन की फसल लगाओ कि कई की भी फसल लगाओ, अपना का पक्षी न का बैठने की जगह रखनी चाहिए, ओका टी आकार का जो डंडा हो वो लगाना चाहिए, पक्षी जो छे वो प्राकृतिक कीट नियंत्रण को नियंत्रक को काम करेगा अने इल्ली न का खाई जाएगा, तो कीट न को प्रकोप अपना आप कम हो जाएगा। साथ ही साथ सोयाबीन की फसल में पौधे संरक्षण का लिए जो अनुसंचित रसायन छे अपना कृषि विज्ञान केंद्र से जाइक लेका न उचित मात्रा में अपना खेत में लगेली फसल का जो तरीका जो प्रकृति है ओका हिसाब से अने किन्हीं प्रकार की अपन ने फसल लगाई सोयाबीन की ओका हिसाब से छिड़काव करना चाहिए पूरी वैज्ञानिक पद्धति से अन विधि से न जानकारी से। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात अपना किसान भाई याद ध्यान रखा कि कहीं का भी अपन जो अपने खेती को सामान लाई रहा हो धरी रहा हो वो काम दुकानदार से पक्को बिल हमेशा लेना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि जहाँ की दवाई ने छिड़काव कर ले रहा अपन कहीं वो एक्सपायरी तो नहीं है, वो का ढंग से पड़ी का अने सावधान रह कर सुरक्षित रह कर अपना खेत का लिए रसायन भी अने कहीं को भी जो यंत्र भी लाई रहा है तो को भी पक्को बिल अपना पास रखना चाहिए। अने ऐसा रसायन जो कि सोयाबीन की फसल का लिए उपयोगी है अपनी भारत सरकार केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा ओकी सूचना जारी करे छे, ओको पतो करी कर ओका हिसाब से अगर सोयाबीन में वो ओके दवाई को छिड़काव करेगा तो जरूर अपनी सोयाबीन की फसल सुरक्षित रहेगा। अब देखो भाई बहनों, सावन को महीनो छे अने अगर अपन देखा तो अपनो मन जो छे वो सावन का झूला झूलने को करे, पर अब शहर न में कहाँ झूला मिले अपना का, तो अपन सावन का गीत सुनान नौका हिलोरा न में अपन आनंद लेवान सावन को, तो सुनान तृप्ति वर्मा को गायलो लोकगीत ने लेवान सावन को आनंद।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: भाई बहन, जहाँ यो सावन को महीनो बरसात का दिन इतना सुहावना हो, वहाँ एक साथ में एक करु समस्या भी आवज वा छे कि भाई बीमार पड़ी जावन। तो बीमार पड़ने को कारण कही रही, सबसे पहले अपन वो देखा तो अपना आसपास नमी ज़्यादा हुई जाए। अब जब अपना का नमी ज़्यादा हुई जाए तो कम नमी में कई पनपी जाए, जो कवक छे, जो फंगस छे, जीवाणु कीटाणु, ये सब नमी का वातावरण में अगर तापमान ज़्यादा हो तो वो पनपी जाए। ऐसा में अपना कई करना चाहिए, गीला जो कपड़ा रहे उनका नहीं पहनना चाहिए। जरा सी भी अगर नमी छे तो कई इस्त्री कर लियो अने फिर ही पहरो, अने दुई चार जोड़ी कपड़ा ऐसा अपना का रखना चाहिए कि भाई बरसात का मौसम छे, एक दिन में तो सूखने वाला है ही नहीं, तो दुई चार दिन तक कहीं अपन वोच कपड़ा थोड़ी पहरांगा। तो अपना का साफ सुथरा सूखा कपड़ा पहनना चाहिए ताकि अपना का किना भी प्रकार का चर्म रोग नहीं हो अने किना भी प्रकार का बीमारी नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, संक्रमण आवाज पानी से, तो पानी कसो पीणू चाहिए बरसात का मौसम में, जहाँ तक हो अपना भले ही से अपन अपना घर में कितना भी तरीका का वो छन्न वाला फिल्टर लगेल हो, अपना को उबलेल पानी पीणू चाहिए, क्योंकि उबलेल पानी में कई प्रकार का कीटाणु जीवाणु मरी जाए न। उबलेल पानी पीने से अपनों पाचन शक्ति भी मजबूत रहे न, बीमारी ने अपना को पकड़ती नहीं है। ये एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि घर में न घर का आसपास या रोड पर कहीं पर भी पानी जमा नहीं हुई रहे, क्योंकि पानी जमा होएगा तो वहाँ मच्छर अपना अंडा देगा, मच्छर आएगा तो काटेगा न, बीमारी न देगा, तो जड़ज खत्म कर दो नहीं, पानी इकट्ठो होना ज मत दो। अन तीसरी बात यह छे कि ऐसा मौसम में फ्लू सर्दी अने गलो नाक खूब खराब हो, कारण यो छे कि शरीर में विटामिन सी की कमी हुई जाए। तो अपना शरीर में विटामिन सी यानी खट्टी खट्टी चीज़ ना थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी खातो रहना चाहिए, ओका से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। अने तीसरी बात यह छे कि इना मौसम में अदरक वाली चाय, मसालो वालो दूध न रात के सोते समय अगर हल्दी वालो दूध अपन पी लो तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। अने खाना में अगर अपन गर्मा गर्म सूप पियो तो अपना का अच्छा भी लगेगा न, अपनी सेहत भी बनेगा। अने कदी बीमार पड़ी भी जाओ तो काढ़ो बनाओ न पियो, तुलसी लौंग काली मिर्ची उबालिक पियो न, अपनो जो स्वास्थ्य छे अच्छो रखो, स्वस्थ रहो न मस्त रहो। तो मस्त रहोगे तब तो अपनी चौपाल पर मस्ती करोगे, तो अरु मस्ती करा कहीं, चलो करी लेवाज। पर पहले सुना जा बात कि सोयाबीन में पोषक तत्व न फर्टिलाइजर को अपन कसो ध्यान रखा, तो एक ही बात करी रहा डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार, सुना या चर्चा।
5: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार, शस्य संविदा शिक्षक, शस्य विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय इंदौर। आज हम सोयाबीन में पोषक तत्वों और फर्टिलाइजर के बारे में चर्चा करेंगे कि सोयाबीन में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और हमें उसकी कितनी मात्रा में अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सोयाबीन जो है वो लेग्यूम कुल की फसल है। लेग्यूम कुल की फसलें जितनी भी होती है उसमें फसल के अंदर ही नाइट्रोजन बनाने की काबिलियत होती है। तो मैं अब बात करूँगा कि मैक्सिमम जो किसान भाई होते हैं वो क्या होते हैं कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अब देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन के लिए नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जो सोयाबीन में हमारे जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो उसको अपने को नाइट्रोजन जो है वो 30 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करना है और फास्फोरस जो है वो 60 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करना है और पोटाश जो है वो आपको 40 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करना है। लेकिन इसके लिए ये होता है कि जो भी आपका फास्फोरस और पोटाश होता है वो आपको बुआई के टाइम ही सारा अप्लाई कर देना है और साथ में नाइट्रोजन जो आपको 30 किलो रिक्वायर होता है वो भी आपको बुआई के समय ही डाल देना है, क्योंकि सोयाबीन में जो है वो बुआई के समय नाइट्रोजन की अधिक रिक्वायरमेंट होती है। एक महीने के बाद क्या होता है कि सोयाबीन के जड़ों में गांठें बनने लगती है, और वो गांठें बनने के बाद में सोयाबीन जो है अपना नाइट्रोजन नत्रजन जो है वो खुद बनाने लगता है, तो उसके बाद नत्रजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए मैं किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि आप खड़ी फसल में यूरिया का जो आप ब्रॉडकास्ट करते हो, जो यूरिया छिड़काव करते हो, उसकी आपको आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके पैसे का फिजूल खर्चा है। बस आपको नाइट्रोजन जो है वो इनिशियल जब आप बुआई करते हैं उसी टाइम डालना है। तो उसके लिए आपको अगर 30 किलो जो है अगर यूरिया डालना है, तो आप ओनली अगर डीएपी अप्लाई कर रहे हैं तो आप डीएपी का ओनली 2 बैग जो है वो अप्लाई कर दीजिए, या मैं कहूँगा कि आप 1.5 बैग अप्लाई कर दीजिए, वो काफ़ी होता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस देने के लिए। और पोटाश के लिए आप आधा बैग जो है वो अप्लाई कर देंगे तो पोटाश उसके लिए सफिशिएंट मात्रा में होता है। इसके अलावा जब खड़ी फसल में अगर आपको कुछ डालना है तो आप डालिए सल्फर, क्योंकि सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो ऑयल की मात्रा बढ़ाता है, और हम जानते हैं कि सोयाबीन में ऑयल बहुत होता है। तो जैसे ही अगर हम लोग सोयाबीन में सल्फर डालते हैं तो सल्फर क्या

0: करेगा कि दाने में ऑयल की मात्रा बढ़ाएगा, और अगर दाने में ऑयल की मात्रा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आपका जो वजन है दाने का वो बढ़ जाएगा, और आपका उत्पादन जो है वो 10 से 20% आपको बढ़ के मिलेगा। तो सल्फर जो है मैंने देखा है कि मालवा क्षेत्र में बहुत कम किसान यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप सल्फर जो है वो यूज़ करिए, और सल्फर मार्केट में दानेदार फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप वो दानेदार फॉर्म वाला सल्फर लेके आइए, ताकि क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो है पौधे को मिलता रहे। और सल्फर जो है आप 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप अपने खेत में अप्लाई करिए, और आप देखना कि डेफिनेटली आपका 15 से 20% जो है वो उत्पादन बढ़ के मिलेगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि एक और पोषक तत्व है जो है बोरोन। अब क्या होता है कि फार्मर्स देखता है कि सोयाबीन में जब फूल आना चालू होते हैं तो फूल तो बहुत सारे आते हैं पौधे में, लेकिन वो सारे फूल से हमको जो पोड़ होते हैं वो नहीं बनते, जो फलियाँ होती वो नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो जो उसके फूल होते हैं वो सब झड़ जाते हैं, आधे फूल। तो वो फूल को झड़ने से रोकने के लिए ये बोरोन जो पोषक तत्व है ये उसकी मदद करता है। तो अगर आप बोरोन जो है वो स्प्रे करेंगे फ्लोरिंग के टाइम पे, जब फूल आता है उस टाइम पे अगर आप बोरोन का स्प्रे करते हैं, तो आपको स्प्रे करने के लिए 1-2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिलाना है। अगर आपके पास 500 लीटर पानी है तो आप 250 ग्राम उसमें बोरोन मिलाइए, और उसका स्प्रे आप सोयाबीन पे कर दीजिए, फूल जो फूल की अवस्था होती है उस अवस्था में। तो आप देखना कि आपके जो बहुत मात्रा में जो है फ्लोवर वो मतलब नीचे नहीं गिरेंगे, और जितने फ्लोवर होंगे उन सब से आपको फलियां बनेगी, और वो फलियां से आपको आपके उत्पादन में वृद्धि मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों की आज की इस जानकारी से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच।
1: तो भाई बहनों अपना का भी जानकारी दिया था डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार, अने जिन्होंने अपना का बताया कि सोयाबीन में पोषक तत्व अने फर्टिलाइजर को प्रबंधन कसो करा। भाई बहनों फर्टिलाइजर रसायन कितना भी अच्छा होए, अगर अपना का अपनी मिट्टी को परीक्षण करेल होए ने ओका में किना तत्व की कितनी जरूरत छे या जानकारी होए, तब अपना का जो रासायनिक खाद छे ओको उपयोग करना चाहिए। अगर समझ नहीं होए, ध्यान नहीं होए, तो सबसे अच्छी छे अपनी जैविक खाद, ओको उपयोग करांगा तो अपनी फसल का कहीं नुकसान कदी नहीं होएगा, सदा अपना का फायदो ज होएगा। तो फायदा की बात तो अपनी चौपाल पर अपन सदा कराएं। अभी तो बात चली रही सावन की, तो चौपाल पर अरु बात करांगा, पर पहला आनंद ले लेवा इसने लता भटोरे का गायला इना लोकगीत को जेका में सावन आयो रे उन्होंने कहे, तो देखा कसो सावन आयो जी।

भाई बहन नोण आनंद आएगा स्नेहलता भटोरे का गायल लोकगीत को सुनी का न सावन को आनंद भी अपने ले लियो न सावधानी भी पूरी रखांगा तो हर मौसम न हर हर त्यौहार का अपन चौपाल पर मिली कर न मनावांगा। इन्हीं बात का साथ खेती गृहस्थी की चौपाल पायला सभी भाई बहनों की तरफ ती बहन की राम राम।

0: अभी खेती गृहस्थी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत से वैश्विक बाजार तक बढ़ते मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को जुलाई के महीने में मंजूरी दी थी। इस स्कीम की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक यानी कि 5 साल की है। पिछले दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में औद्योगिकी रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस सेक्टर ने लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आधारित आर्थिक विकास और आजीविका पैदा करने में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। अकेले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ही अभी लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शिशिर सिन्हा।

0: शिशिर जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: शिशिर जी, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू करने के पीछे सरकार की आखिर क्या सोच थी?
1: देखिए, ये जो स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, ये दरअसल पुरानी स्कीम की जगह लेगा। पुरानी स्कीम क्या थी? हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, और उस स्कीम का जो नतीजा है वो अगर आप देखें, जैसे कुछ आंकड़े आपने शुरुआत में बताए, आंकड़े ये बताते कि 2014-15 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 18,000 करोड़ का था मोबाइल हैंडसेट की अगर मैं बात करूं, जो कि 2025-26 में 6.27 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 33 गुना बढ़ा। आप अगर निर्यात की बात करिएगा तो लगभग 1,500 करोड़ का था 2014-15 में, जो कि 2025-26 में बढ़कर के करीबन 2,60,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो 165 गुना बढ़ा है। अब ऐसे समय में हमने ये देखा कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी ब्रांड थे, वो देश में उन्होंने अपनी पैठ बना ली, उन्होंने यहाँ पे इसको हब बनाया और हम यहाँ से बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरेलू ब्रांड को कैसे बढ़ावा देते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे ब्रांड हैं जो स्थानीय स्तर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि PLI में उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया, लेकिन उस तरीके का स्केल जो चाहिए था वो शायद उनके पास उस तरीके का नहीं था। अब वो माहौल बन चुका है, अब आपके पास एक इकोसिस्टम तैयार है, उस इकोसिस्टम में घरेलू कंपनियों को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, विदेशी कंपनियां जो होंगी सो होंगी उनको आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये 5 वर्षों की स्कीम है, जिसमें करीबन 62,000 करोड़ रुपए का जो है वो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और मुझे लगता है कि मोबाइल हैंडसेट एक ऐसी चीज है, जैसे आप देखेंगे कि अभी आप किसी के भी हाथ में देखें तो एक तो मोबाइल हैंडसेट है ही, कई लोग हैं कि दो दो मोबाइल हैंडसेट रखते हैं, कि देश में मांग काफी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है। एक और चीज आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए डिजिटल जो है वो हमारी जिंदगी की जरूरत बन गई है। पहले हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान मोबाइल फोन और डेटा। ये पांचों हमको चाहिए जो हमारी जिंदगी को सही तरीके से चला सके। तो घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग उनको देखते हुए और घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी को ध्यान में रख करके ये स्कीम लाई गई है।
0: आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि IPs जो हैं उनका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आखिर क्या योगदान है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिर क्या कहा।
2: TS2 टारगेट सेगमेंट 2 इज फॉर सपोर्टिंग इंडियन IP, इंडियन डिजाइन, इंडियन ब्रांड। दैट्स अ फंडामेंटल initiative. It's a very ambitious initiative, but we have taken in consultation with the industry. If you recall, we had a mobile manufacturing ecosystem, but because of the tax issues and because of the Chinese onslaught, it became impossible for them to compete in the market. Now that we have been able to establish the ecosystem back in our country, time has come when we should be now focusing on developing Indian brand. Indian brand, Indian IP, Indian design. That is the thought process, and I think we are taking very measured, very calibrated steps on that. We have very closely coordinated with the industry, and we hope that in the tenure of this mobile phone manufacturing scheme, we'll have a good success on the having Indian brands.
0: शिशिर जी, जैसे कि मैंने भी बताया कि आज दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को ब्रीफ किया कि इस स्कीम के बारे में, जो कि जुलाई के महीने में ही आ गई थी, और उसको कहा गया था कि ये अप्रैल से लागू हो गई है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस स्कीम के अलग अलग पहलू क्या है।
1: देखिए, सबसे बड़ी जो बात इस स्कीम की है जो मुझे समझ में आती है कि वो घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर कल पूर्जे का उत्पादन करना, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम एक मोबाइल हैंडसेट बनाते हैं, हम अमूमन ये कहते हैं कि हम एक असेंबली प्लांट हैं। आप असेंबलिंग प्लांट हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको बाहर से पड़ती है। अभी के समय में देखिए कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है, वो है आपका चिप को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत सारे चिप यूनिट्स स्टार्ट हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि 2027 तक हम उसका निर्यात करना भी शुरू कर देंगे। तो दूसरा पहलू यह है कि आप लोकलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। पहला तो आप घरेलू ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा जो भी विदेशी कंपनियां हैं या देसी कंपनियां हैं वो लोकलाइजेशन को कैसे बढ़ाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का जिक्र किया कि लगभग 18% से बढ़कर के 23% तक आया है, अभी हमें इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि आप तकनीक के मामले में, डिजाइन के मामले में, आप किस तरीके से घरेलू स्तर को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई विदेशी ब्रांड है या विदेशी डिजाइन है, आपको एक रॉयल्टी की रकम अदा करनी पड़ती है।

0: है, पेटेंट की रकम अदा करनी पड़ती है। ये यदि आपके अपने देश में विकसित होना शुरू हो जाए तो आपके लिए ये एक बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसका जाना रुक सकेगा। तो हम असेंबली से कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सके, उसके लिए ये तीन जो कंपोनेंट की मैंने आपको बात की, तीन अलग अलग वर्टिकल की बात की, और ऑफ कोर्स उसके बाद ये है कि जैसे जैसे जरूरतें और जैसे जैसे तकनीक की जरूरतें बढ़ रही हैं उसके आधार पर आप कैसे हैंडसेट को तैयार करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ खास बिंदु है इस योजना के, और उम्मीद ये की जा रही है जैसा आंकड़े दिए जा रहे हैं कि लगभग 39 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रोडक्शन हमारा पहुंच सकता है। और मुझे लगता है कि ये आपके निर्यात को अगर आप ध्यान में रखिए, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और रोजगार भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 60,000 सीधे रोजगार की बात होगी। तो ये सारी संख्याएं और सारे जो वर्टिकल्स को अगर आप मिला दे तो हमारे एक कम्प्लीट इकोसिस्टम तैयार होगा जो आगे चल करके आपको दुनिया में और बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है।
1: अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया था कि भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे मोबाइल फोन उत्पादन में है, मैन्युफैक्चरिंग में, और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से भी कंपनियां भारत में अपने असेंबली यूनिट्स को लेकर आ रही हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि किन देशों ने अपने मोबाइल फोन असेंबलिंग यूनिट्स को भारत में लाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है।
0: देखिए, सबसे बड़ी तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हमारे आपके पास जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें से अगर आप देखें तो या तो वो सैमसंग का होगा या एप्पल का होगा। तो अमेरिका से एप्पल जो है वो लेकर के आए और कोरिया से हमारे पास सैमसंग आए। इसके अलावा नोकिया ने भी अपना यहाँ पे काम शुरू किया है। ये जो तीन देश हैं जो कि काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते थे वो अपने यहाँ पर असेंबलिंग शुरू की। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ही क्यों? तो एक तरफ तो आपने उत्पादन में प्रोत्साहन राशि आपने दी उनको, दूसरी तरफ यहाँ पे जो श्रम शक्ति है वो काफी सस्ती है, ये एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो यहाँ पर जिसको कहते हैं भारत के पक्ष में जाता है कि पहले हमारी एक बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारा जो पहले कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने और फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की लागत ज्यादा होती थी, इससे हमारे प्रतिस्पर्धा के ऊपर असर पड़ता था। तो अभी जब पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई या उसके पहले भी सड़कों के ऊपर बात हुई, चाहे रेल मार्ग की बात करें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इन सबका नतीजा ये हुआ है कि आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। तो आपके पास एक श्रम शक्ति सस्ता है, आपके लिए जो लागत है जो सामान बाजार से बाजार तक पहुंचाने या कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने वो लागत कम है। और तीसरी बात जो भी महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि बाहर के देशों से कंपनियों के लिए एक बड़ी मददगार साबित होती है सेकंड लेयर में। तो आपके पास लेबर है, उसके पास एक व्हाइट कॉलर जो हम लोग कहते हैं कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, बाहर के देशों के साथ बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, व्यापार पे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य आपके पक्ष में है, इसीलिए हमारे लिए उन देशों को जो अपने यहाँ सामान बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनके यहाँ एक और बात आप याद रखिए, उनके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। हम कहते हैं ना कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। तो अब उस 35 वर्ष से कम उम्र के लिए रोजगार के मौके की अगर हम बात कर रहे हैं, उनको अगर हम प्रशिक्षित कर देते हैं और बाहर के देश यहाँ पर आकर के पूंजी और तकनीक लगाते हैं तो आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा।
1: शिशिर जी, और एक चीज में जो आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी आई है और कैसे ये सेक्टर बढ़ता ही चला जा रहा है।
0: देखिए, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी चीज से हुआ तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी किसी भी देश में निवेश करती है तो वो दो तीन चीजें देखती है। एक वो ये देखती है कि क्या वहां पर मुझे सामान का उत्पादन करना मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, सस्ता है कि नहीं है। दूसरा वो ये देखती है कि वहां से अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में सामान पहुंचाएं तो उसकी हमारे लिए लागत क्या बनेगी। अगर हम वही सामान अपने आप बना करके बाहर भेजते हैं और भारत में ला करके तैयार करते हो फिर उसे दुनिया के दूसरे देशों में भेजते, तो उसकी जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो आपके लिए किस तरीके से है। और तीसरी बात ये, राज्य सरकारों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करें। उनके लिए जमीन की सुविधा है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर मंजूरी है वो देने की बात होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक विदेशी कंपनी को लुभावित करती है। और अगर आप देखें, हम आप जहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक इलाका जिसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, वहां पर आप देखें तो मोबाइल हैंडसेट की जो असेंबलिंग यूनिट्स हैं जिस स्तर पर उनका विस्तार हुआ है वो काबिले तारीफ है। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर आप बात करें, अलग अलग राज्यों में भी बात करें, वहां भी विस्तार हुआ है। तो ये सारे तथ्य जो हैं इन कंपनियों को एक मौका देते हैं, प्रोत्साहित करते कि आप आइए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रोत्साहन देने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी एक फायदे का सौदा है। उनके यहाँ अगर निवेश आता है, उनके अब बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, उसके अलावा कई तरह के अप्रत्यक्ष तौर पर जो गतिविधियां होती हैं उनको फायदा पहुंचता है, तो राज्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इन सब का मिला जुला ये हुआ कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर मैं मोबाइल हैंडसेट की बात करूँ, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई।
1: आपने जैसे कि मोबाइल हैंडसेट का जिक्र किया, तो उसी पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आने वाले सालों में क्या डेवलपमेंट होगा उसका भी जिक्र किया, और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,
2: टाइमलाइंस ऑलरेडी दी कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग एंड वी हैव सेड दैट दिस स्कीम बेसिकली किक्स इन फ्रॉम 1st April ऑफ दिस ईयर, दिस फिस्कल ईयर FY 2026-27. So from 1st April 2026, the scheme becomes effective. So that way there is a continuity of the previous program, so that all the hard work which the sector has done so far also gets accounted for. The new Indian brand industry is working on it. There is a lot of discussion going on between various players in the entire ecosystem, whether it is the brand designers, the component designers, the design of the full phone, the design of the entire PVC, the PCB assembly. All those things are right now that is work in progress and as soon as something comes up we'll definitely inform you.
1: आपसे मैं एक चीज और यहाँ बात करना चाहूंगी, भारत में होसूर और श्री पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में है और बैंगलोर या बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, वहाँ मौजूद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अकेले ही 1,00,000 से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले नौकरियाँ दे रहे हैं।
0: मोबाइल हैंडसेट में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टेक्निकली आप कहिएगा कि वो रोबोटिक हो जाते हैं, वो उस तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर आपको मानव श्रम की जरूरत होती है, जहां पर पैकेजिंग करनी है, कुछ खास तरह के इक्विपमेंट लगाने हैं, ब्रांडिंग करनी है, उन सब चीजों में बड़े पैमाने पर आपको जरूरत होती है। तो जब इन तीन जगहों का जो आपने जिक्र किया दक्षिण भारत के, जहां पर काफी विस्तार हुआ, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, खासतौर पर मैं तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पर काफी बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, जहां पर तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है, तो स्किल्ड मैन पावर आपके पास एक इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो रहा है। वहीं पे एक और इंडस्ट्री है जहां पर आपको उसी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ करीब करीब मिलते जुलते आपको लोगों की जरूरत हुई, तो वहां पर आपका विस्तार हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी आप ध्यान रखिए कि आपने इन तीन जगहों का जिक्र किया जहां पे 1,00,000 से ज्यादा की नौकरियों की, मोबाइल असेंबलिंग में या मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में 12,00,000 नौकरियां जो है अब तक सृजित हुई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 70% महिलाएं हैं, जिसको कहते हैं ना कि हम जो आधी आबादी को बेहतरी देने की बात करते हैं, वो ये उद्योग काफी उसमें मदद कर रहा है।
1: शिशिर जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आज जो स्कीम के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग करी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके बारे में आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत से वैश्विक बाजार तक बढ़ते मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

ठंडी हवाएं जब भी चलती हैं अपने साथ, मौसम की ताजगी और दिल में मीठी सी उमंग लेकर आती हैं। कभी ये हवाएं बीती यादों को छू जाती हैं, तो कभी अपने की याद दिला जाती हैं।

कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। और जब कोई अपना याद आ जाए तो बस दिल यही कह उठता है।

सरल मन के इंसान रफी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। वो हर तरह के गाने इस खूबी से गाते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते।

जिंदगी का सफ़र तभी खूबसूरत लगता है जब कदमों के साथ किसी अपने का साथ हो। सुख हो या दुख, धूप हो या छांव, बस एक हम सफ़र हाथ थामे रहना ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोता हुआ हमारा ये गीत।

सफ़र कितना भी लंबा हो, राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर साथ सच्चा है तो हर मंजिल आसान लगती है। ज़िंदगी भी तो एक खूबसूरत सफ़र है, जिसमें किसी अपने का साथ हर कदम को खास बना देता है।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कभी कभी किसी अपने का साथ मिल जाए तो अनजानी राहें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। खोई खोई सी राहों में जब हम सफर साथ हो तो हर मोड़ एक नई कहानी बन जाता है।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से

0: शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
4: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने

0: उल्डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रूपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said License Raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों मैं जानता हूं कि अगर मैंने अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है तो सारा मीडिया सारी स्क्रीन्स सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाकर के खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है।
2: Earlier today, Prime Minister interacted with Chief Executive Officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. The UN and Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero-tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inaugurating a six-day awareness exhibition on the Bharatiya Nyaya Sanhita at the Kawakhali ground.
4: I assured the Hindu, Sikh and Jain refugees who have come from Bangladesh that within 6 months we will grant citizenship to all of you. The Union Home Ministry has delegated its power to 8 characters of the West Bengal government. At the same time, I want to once again assure the people of Bengal that every infiltrator will be identified and removed from the state.
2: Mr. Shah said for the safety and security of the state and the nation, the sensitive Siliguri corridor known as the Chicken Neck is paramount. He added that the Chicken Neck connecting 8 states of the northeastern India and 3 countries Nepal, Bhutan and Bangladesh will be fortified by a triangular grid of army cantonments built in Chopra, Dhubri and Kishanganj, saying that public awareness, security force presence and visibility have been greatly increased. Earlier today, the Home Minister laid the foundation stone for various projects for the Sashastra Seema Bal in Siliguri. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari was present in the events. The government has assured that adequate sugar stocks are available to meet domestic demand despite lower than estimated production. The Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said it is closely monitoring the recent rise in sugar prices and has taken measures to ensure sufficient availability and stable prices. The Ministry said attributing the price rise to diversion of sugar for ethanol production is not correct. He said the share of sugar diverted for ethanol declined from around 12% in 2022-23 to around 9% in 2025-26. It said nearly 3/4 of ethanol produced in the country now comes from grains, particularly maize. We have a report.
5: Government is taking actions against hoarding to increase supply of sugar. The ministry observed that speculation and hoarding by some sugar mills and traders have also contributed to the recent price increase. The government has imposed a stock limit of 400 tons on sugar dealers across the country from

सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए मुक्ति फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम चित्रगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं लव मैरिज फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने।

लव मैरिज फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन के सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये गीतों भरा सफर आप ही की फरमाइश पर है और आप ही का अपना कार्यक्रम है जिसका नाम है मन भवन। आप हमें अलग अलग तरह के खत लिखते हैं, अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं और हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पहला गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे हमने लिया है महबूबा फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब, लाबरिया भैरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। जलगांव जालना से इस गीत को पसंद किया नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विनी। जलगांव से वैष्णवी जगदाले, हरसोल और सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज, युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर इस गीत को सुनना चाहते हैं। और बलिया से इस गीत को पसंद करते हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी रॉय। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल, गाजीपुर से ही अवधेश रॉय, प्रीति और नवनीत रॉय। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब, साइमा, पोतरा मुश्ताबा, पोत्री हफिया खान, राउफ और शहीद। अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत महबूबा फिल्म से।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के स्वर में आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारे, विलास, मनोहर, तैमूर बारे, रावेर से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनुस, मोहत से मुशर्रफ, जरीना, परवेज, रोजमीन और तैमूर तड़वी, मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका पंचोली, नंदिनी, निखिल और गौरांज पंचोली, इसी गीत को पसंद करते हैं। लातूर हून से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर फैजनबी, शाकिर इस्लाम नबी, बाबा करिश्मा शेख, सानिया शकील पठान, बिस्मिलाबी गदर शेख, आणी नीलोफर शेख, हिप्पर सोगा, तालुका बिलोही, चांदनी अयूब और राजे अमन। दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। तिरुपति नगर लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, प्रकाश जैन नांदेड़ से, बीड से रणजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और नबरू पहलवान। इसी गीत को पसंद करते हैं। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। मंदसौर से तुषान दांगी, हिना, लक्ष्मण, बाबू और नेपाल दांगी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन भवन का ये सुरीला सफर जारी है आपकी पसंद के गीतों के साथ। लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत बाहर आने तक फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास ने। इब्राहिम अश्क के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ। महाराष्ट्र से अभिजीत गावणकर, सरिता, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गावणकर। नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित गावणकर और ध्वनि गावणकर और परी इसी गीत को पसंद करते हैं। इंदौर से भावना टेलर, प्रतिभा पांजारे, नेहा, मनीष शर्मा, बल्लू जिया, आशीष, भावना जाधव और दिनेश पांजारे। धम्मदिना से अरुण काले, एडी काले, तुषार कुर्ने, प्रसीक कुर्ने, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण कोल्हापुर से इस गीत को पसंद करते हैं। और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। लीजिए अपनी पसंद का अगला गीत सुनिए।
3: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
4: इतनी वफादारी आजकल।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म का गीत, अलका याग्निक कुमार सानू के स्वर में, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब मालेगांव से सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन, पंजाब से हरदेव मीका, पलविंदर विरक, जैतेक विरक, मीका विरक, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम रियाज, रिफाकत शमरीन, परवीन मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक और मोहम्मद उमर डाबर, महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र, इंगोले सिद्धांत टिंकू, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम इंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े, महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, झुमरी तलैया से छकुली देव, छोटू दादा, पेंटर रामचंद्र और महेंद्र चौरसिया, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जस्मीन और प्रयागराज भट्ट, और इसी गीत को पसंद किया इंदौर से देविका चौधरी, कविता संजय, मनीष ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कसूर फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया हुआ। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब। इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो उबेद, रजिया जुनेद, अलीना आयत, मुआज मंसूरी। शाहपुर से विजय चौहान, तेजस्विनी माई, करिश्मा, अंकिता चौहान, अनिकेत, सूरज सुरवे, नमिता प्रकाश सुरवे। इसी गीत को पसंद करते हैं पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे। इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, नैना, पूजा, स्मिता और राखी। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। और महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित

0: बात कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन। श्रोताओं, ये आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम है मन भवन, और इसमें आप हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं और उन्हें हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम आपको पता बता देते हैं, हमारा पता है कार्यक्रम मन भवन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर, पिन कोड है 452001। इस पते पर आप अपनी फरमाइश लिखकर हमें ज़रूर भेजिए, हम उसे अपने इस कार्यक्रम में शामिल अवश्य करेंगे। लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, समीर के बोल है, नदीम श्रवण का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। खंडवा से इस गीत को पसंद किया शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी खंडाले, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले ने। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। इसी गीत को पसंद करते हैं मुकाम हिप्पर सोगा तालुका लातूर होन से इस्लाम शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर फैज नबी शाकिर, इस्लाम नबी बाबा शेख करिश्मा, सानिया शकील पठान, बिस्मिला भी शेख, गदर शेख, आणी नीलोफर। हिप्पर सोगा नांदेड़ होन से चांदनी अयूब सैयद, आणी बाल और राजे अमन। महाराष्ट्र से टिंकू इंगोले और रमाबाई। इसी गीत को पसंद किया छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खूमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया। छत्तीसगढ़ से ही रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान खान। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। कालेगांव जाफाबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित घायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख। रिसोड से सानवी देशमुख और सरवद देशमुख। इसी गीत को पसंद करते हैं सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सनी और कोमल यादव। तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

तो ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। कुछ और फरमाइशें थी इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल अर्जुन और धीरज, इसी गीत को पसंद किया था। शाहजहाँपुर से एम राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमलेश, सरोज आरती, रेखा, रीतिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार ने। नांदेड़ से इस गीत को पसंद किया था मिलिंद खंदारे, भारती नागसेन, प्रीतम कुमार,

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रागिनी देवेले का गायन। राग है भोपाली।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रागिनी देवले का गायन। राग था भूपाली, संगीतकार तबले पर संगीता अग्निहोत्री। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are a commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing seven key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that seven such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's policies. Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inaugurating a six-day awareness exhibition on the Bhartiya Nyay Sahita at Kawakhali ground. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav today launched the Mobile Phone Manufacturing Scheme, MPMS. The Union Cabinet had approved the scheme last month with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The Ministry of Electronics and IT has also notified the scheme. The scheme aims to increase global competitiveness by further enhancing the scale, deepening the mobile manufacturing supply chain and stronger domestic manufacturing capabilities. Addressing media in New Delhi, Mr. Vaishnav said the MPMS has two target segments including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness, with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty or other warning signs to seek medical advice promptly. Vice President C.P. Radhakrishnan has highlighted the importance of preserving India's cultural roots, noting that culture is a strong bond that unites the country. Addressing the Antar Hriday Connect Malha 2026 event in New Delhi, the Vice President called upon the youth, particularly the Gen Z, to contribute towards reforming and strengthening the system with patience and responsibility. In women's hockey, the Indian women's team is taking on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the AFIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is underway. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. India trail Netherlands 0-1 at half-time. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 4.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 5:55 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।